印度的广播电台，现在播送一篇特写，题目是《安德拉邦》。安德拉邦是丰富自然资源、文化遗产、历史性

这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

टालाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना अयोध्या कांड भाग 64। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगी।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्या अनिश्चिततया भौगोलिक सामीप्येन च उद्भूतानां समाह्वानानां मध्ये भारतस्य सज्जतायां भूरणनीतिक चिन्तनम् आकस्मिक परिस्थितीनां कृते योजना निर्माणं च अभिन्नौ अंगौ भवितव्यौ। ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना सैन्याध्यक्ष सम्मेलनं संबोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् देशस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति, संकटस्य अस्माकं द्वारं प्राप्तेः पूर्वमेव तम् अवरोद्धुं सज्जतापूर्णा भवेत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमानं

सेक्रेटरी लुवारनगरी विक्रम विक्रम मिश्री मंगडाकान प्रथमवन डंगन डेलिगासी कांग्रेस अमेरिका शरीकत वलियो मनम्बाकान बाबा सलामा प्रथमवन तरसबुद बुरबागई ईशु यंग ब्रसिफात बायलेटल रिडिस्कुसिकान मंत्री लुवार नगरी डॉक्टर एस जयशंकर मन्यतागान बाबा हुबुंगन इंडिया डंगान चीना हारी इनी लबी बाइक डाजी तो हाउन ललु बरबिचरा डालम सबू आचारा यांग दिसलंगाराकान ओले एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क डॉक्टर एस जयशंकर मन्यतागान बाबा हुबुंगन तरसबूत मुलाई मंबाइक सतला कबुंतुआन परबातसान दिसला साइकान बलियो मन्यतागान बाबा इंडिया सुडालामा मंबरिताऊ चीना बाबा पनरुनान डालम हुबुंगान बिलात्रल टिडा मंबांतु कडुआ नगर डान कबंतुआन यांग पांजांग टिडा मलाइनी कपेंदिंगन नगारा माउपुन बिचबर विचार तंतांग हुबुंगन इंडिया अमेरिका सरिका डान नेगोशियासी नेगोशियासी प्रजांजियन प्रडगंगान मंत्री लुवार नगरी मन्यताकान बाबा कडुआ नगारा तला मंचा पाई स्तुत सितुआसी दिमाना अडाका सपाहामान मंगनाई प्रजांजियन प्रडगंगान इंडिया डन अरब सऊदी मनिंजाऊ कर्जा समा डालम प्रतानन का आमनन प्रडांगांगन इन्फेस्टासी एनर्जी टेक्नोलॉजी नायनान कसेयातान डन पंडितिकान सलामा प्रथमान डंगन मंत्री कौवांगन अरब सऊदी मोहम्मद अलजाडान डी सला सला प्रथमवान ताहुनान आ ई ई बे अथवा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अथवा बैंक इन्वेस्टासी इंफ्रास्ट्रक्चर आशिया दी दोहा मंत्री कौवंग निर्मला सीतारमण मंगंबारकान अरब सऊदी सभागाई मित्र स्ट्रैटेजिस इंडिया यंग प्रचाया तपरचाया डान बरनलाई मरेका मन्यांबोद बाइक पनेरसायान नेगोशियासी नेगोशियासी यंग बरहासिल अत्तास प्रजांजियन इन्वेस्टासी बिलात्रल इंडिया अरब सऊदी यंग बरतुजुआन उन्तुक मेमरिकन करांका यंग लबी कुआट डान लबी डापात दी प्रदेक्सी बागी इन्वेस्टासी इन्वेस्टासी इंडिया डन जापान कमारिन मन डिस्कुसिकान पोटेंसी उन्तुक लबी मंपरकुवत कर्जा समान डालम कौन कम्युनिकासी डिजिटल डान कचरडासान बुआतन अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कुसी डिस्कुसी तरसबू डी अडाकान सलामा प्रथमान तरह दूता पसार इंडिया उन्तुक जापान नागमा मल्लिक डान डायरेक्टर जनरल उरुसान इंटरनेशनल का मंत्री डालम नगरी डान कम्युनिकासी जापान हिडेयो फिशुदा दी टोक्यो हारिनी beberapa pemimpin politik Kashmir, pembela-pembela hak asasi manusia internasional, jurnalis, perwakilan-perwakilan masyarakat sipil dan aktivis-aktivis kemarin dengan tegas mengecam Pakistan atas eskalasi pelanggaran hak asasi manusia di Jammu Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Jammu Kashmir dalam sebuah konferensi internasional yang diadakan di Klub Pers Geneva. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Partai Nasional Rakyat Kashmir Bersatu untuk atau United Kashmir People's National Party di salah-salah sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Human Rights Council yang sedang berlangsung di Jeneva. Menurut UKPNP, para peserta dengan tajam mengkritik laporan-laporan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-sewenang, pemadaman komunikasi, dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan-pasukan keamanan Pakistan di POJK. Konferensi tersebut juga menuruti tuntutan-tuntunan untuk pemerintah mandiri yang demokratis kepemilikan sumber daya alam, kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi, stabilitas, dan supremasi hukum di wilayah yang diduduki tersebut. Dalam langkah yang signifikan menuju pendalaman kerjasama maritim antara India dan Kenya, kapal Angkatan Laut India atau Indian Naval Ship terkash sebuah fregat rudal berpemandu garis depan tiba di pelabuhan Mombasa di negara Afrika Timur tersebut kemarin untuk perputaran operasional yang akan berlangsung hingga tanggal 2 Oktober. Kunjungan pelabuhan tersebut akan menampilkan pertukaran-pertukaran profesional, interaksi-interaksi antara awak-awak kapal dan penjangkauan komunitas. INS Terkast akan terbuka untuk pengunjung pada hari Kamis saat berkeberangkatan kapal dijadwalkan untuk melaksanakan latihan pelayaran bersama Angkatan Laut Kenya. Demikian diposting oleh Komis Tinggi di New Nairobi di X. Kunjungan tersebut memajukan kerjasama maritim India Kenya di Samudra Hindia Barat dan mencerminkan visi Mahasagar India. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman kemarin bertemu dengan mitranya dari Qatar Ali bin Ahmad Al-Kuwari di salah-salah pertemuan tahunan AIIB di Doha. Kedua pemimpin mendiskusikan perluasan sistem pembayaran UPI atau Unified Payments Interface atau antarmuka pembayaran terpadu India di Qatar dan penguatan kerjasama keuangan antara kedua negara. Pembicaraan-pembicaraan juga berfokus pada implementasi komitmen investasi Qatar sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat di India.
Katarlibatan yang lebih

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Namaskar, Akashwani se samachar prabhat ke saath main Mukesh Kumar Bal. नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय

0: सेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
2: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गाँव तक पहुँचा।

0: बनाया गया। वहीं ऐतिहासिक सौनी योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
0: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
2: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते, इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
0: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबेल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 4 लाख से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच

0: तीन मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी नवी के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecast heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's Biannual Commanders Conference 2026 in New Delhi, Mr. Singh said that the developments reflected the growing maturity of India's domestic naval shipbuilding ecosystem. underlining the Navy's

0: And at 2:38-2:34 in the finals today at Okazaki Chiyosugu Park, Japan. The Indian team comprising Jyoti Sureka Vennam, Chikita Taniparthi and Pritika Pradeep entered the finals after beating South Korea 2:34-2:33 in the semi-finals. India won gold in the women's compound team event at the 2023 Asian Games in Hangzhou. India is now on 9th position with a total of 53 medals, including 7 gold, 21 silver and 25 bronze medals. In men's cricket, India will face the West Indies at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati today in the second ODI of the three-game series. The match will begin at 2 p.m. Indian Standard Time. After a convincing 8-wicket victory in the opening match in Thiruvananthapuram, India aims to extend their lead in the series and establish an insurmountable advantage. With Virat Kohli and Shubman Gill each scoring a century in the first ODI, the hosts are confident going into the second game and looking to continue their strong batting performance. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Shagun. The iconic victory shot of the Fantastic Four with their Ramraj, M.R. Povamma, Prachi Singh and Kiran Pahal, who ran a great race in the women's 4x400-meter relay to give India its first athletics gold at the 2026 Asian Games, appears across all front pages this morning. The Pioneer headlines: Amit Shah opens Barapula Phase 3, promises smoother east-south link. U.S. forces to leave Iraq after 2+ decades today. Headlines, Hindustan Times. India-US FTA will improve ties, says EAM. S. Jaishankar notes the Asian age. Air India to resume direct Delhi-Tel Aviv flights from December 1, informs the Pioneer. And finally, a Financial Express article titled "The Battle for the Screen Time" informs brands are working to walk the scrolling Gen Z audience from discovery to fandom to purchase without losing them to a rival. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in an encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecasts heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 trade ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, शुमाल मशरक़ी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहदबस्तगी की तौसीख की है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमरीका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाज़ों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2004

26 को तारीखी साल करार दिया है। कल नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की साल में दो बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि यह पेशरफ्त घरेलू बहरी जहाज साजी निजाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी से मुतालिक बहरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया का बहरी जहाज़ों की तैयारी का इको निज़ाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है।

0: निगरानी निज़ाम में खातिर का अपडेट पर जोर दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बहरी आमोदरफ्त का बढ़ता हजम और पेचीदगियाँ तजजियाती सलाहियतों की मांग करती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बहरिया की जदीद कारी के हुकूमत के अज़्म को नुमाया करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के नज़रिए की तकमील में भारतीय बहरिया स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम रोल अदा करेगा। चुनाव कमीशन ने नौजवान वोटर्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंदराज को यकीनी बनाने के मकसद से दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इंदराज के लिए खसूसी कैंपों का अहतमाम किया है। कल बड़ी तादाद में तलबा खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR के बारे में मालूमात हासिल करने और इंतखाबी फॉर्म हासिल करने या दाखिल करने के लिए इन कैंपों में पहुँचे। कैंप आज भी जारी रहेंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इन कैंपों में मौजूद BLOs तलबा के फॉर्म भरे हुए फॉर्म हासिल करने और SIR से मुतालिक सवालात के हल के लिए उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। कैंपों का एक और मरहला अगले महीने की 7 और 8 तारीख को मुनक्किद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तमाम जुमरों के वोटर्स के इंदराज के लिए अगले माह की 4 और 11 तारीख को तमाम पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे। कमीशन ने कहा कि रवां साल 1 अक्टूबर को या इससे पहले 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए दरख्वास्त दहंदगान को वोटर फहरिस्त में अपने नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में दरख्वास्त देनी चाहिए। इसी ने वाज़े किया कि अब तक दिल्ली में 4 लाख से ज़्यादा समातें की जा चुकी हैं। चुनाव कमीशन ने यह भी कहा है कि जिन वोटर्स को अनमैप्ड या मंतकी एतबार से फ़र्क के लिए नोटिस मौसूल हुए हैं उनकी मदद BLOs करेंगे जो दस्तावेजात जमा करने के लिए उनके घरों का दौरा करेंगे। इसी ने दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नज़रसानी के शेड्यूल में तरमीम की है। दावे और एतराजात दायर करने की मुद्दत अगले माह की 30 तारीख तक जारी रहेगी जबकि हतमी वोटर फहरिस्त रवां साल 4 दिसंबर को शाया की जाएगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में कल शाम सलामती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक चोटी का दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द की शनाख्त कमांडर फौजी मूसा के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज की चिनार कौर ने कहा कि यह कार्रवाई बडगाम में यूसमर्ग के नज़दीक कोराग में फौज पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने मुश्तरक तौर पर अंजाम दी। मूसा जम्मू और कश्मीर में कई हमलों में मुलविस होने की वजह से मतलूब था। 5 सितंबर को यूसमर्ग में हुई मुठभेड़ में वो बच निकला था लेकिन इसका करीबी माविन यासिर हलाक हो गया था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके में उगाए गए लिलियम के फूलों की पहली कमर्शियल कार्गो परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सक्सेना ने बताया कि कमर्शियल कार्गो लद्दाख की ज़रई तारीख में नए बाब का आगाज़ है। जनाब सक्सेना ने कहा कि बागबानी फूलों के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और लद्दाख के मवाफिक आबो हवा और दर्जा हरारत के सबब आला मेयार के साथ हौसला अफजा कामयाबी मिली है। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह आज पंजाब का दौरा कर रहे हैं जहां वो जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वज़ीर दाखला इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये यात्राएं जिनका आगाज़ BJP के सदर नितिन नबीन ने इस महीने की 18 तारीख को पठानकोट से किया था 13 दिनों में सभी 117 असेंबली हलकों में 4000 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी हैं। इन यात्राओं का मकसद पंजाब में मुनशियात के खिलाफ लड़ाई को अवामी तहरीक बनाना है। ये यात्राएं फिलहाल पंजाब को दरपेश 3 अहम मसाइल मनशियात की बढ़ती लत अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदउनवानी पर मरकूज हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक केरला माहे तमिलनाडु और शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश पुडुचेरी ओडिशा मध्य प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में आज गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने आज दिन में मतला साफ रहने की पेशगोई की है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और कम अज़ कम दर्ज हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के तई अपनी अहद बस्तगी की तौसीक की है। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक आला सतही मुकम्मल इजलास के दौरान بھارت کا موقف

0: हमारे गांव में नहर आई, पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी को कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने ओकाजाकी चौसोगो पार्क में खेले गए फाइनल मैच में आज चीन को 234 के मुकाबले 238 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बिरसा पाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकरोजा मैच में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। पहले एकरोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने सेंचुरियां स्कोर की थीं, जिससे मेजबान टीम के हौसले बुलंद हैं और वो दूसरे एकरोजा मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। ये 3 खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से सुर्खी लगाई है कि बहर हिंद में सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर। अखबार ने शहरी हवाबाजी के वजीर के बयान को अहमियत देते हुए लिखा है, नायडू ने दुनिया को भारतीय हवाबाजी की मार्केट से जुड़ने की दावत दी। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर खजाना सीतारमन ने दोहा में नेपाल सऊदी अरब के वज़राए खजाना के साथ 2 तरफा अहमियत की हामिल मीटिंगें की।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक केरलम और शुमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तई अपनी अहद बस्तगी की तौसीख की है। और कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमेरिका के विस्कॉन्सन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे सोनाली नाटा से ठुमरी राग, मिश्र रामदासी मल्हार और मिश्र सिंध भैरवी, साथ ही दादरा राग मिश्र भैरवी।

يد الله فوق

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में दो और निशानेबाजी में एक स्वर्ण सहित कुल तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचांग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमरीका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार।

अभी आपने सुना मशहूर शायर अमीर सिनाई का ये कलाम, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और फिल्म थी दीदारे यार। और आज है 30 सितंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। बाइबिल के अनुवादक संत जेरोम की याद में मनाए जाने वाले इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 2017 में, ताकि दुनिया को भाषा के आधार पर जोड़ा जा सके। और इस साल की इसकी थीम है भाषाई विविधता और भाषा का अधिकार, यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज राइट्स। और इसका उपशीर्षक है समझे जाने की शक्ति, यानी द पावर ऑफ बींग अंडरस्टूड। अनुवाद

सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म है जो मूल लेखक की भावना संस्कृति को बिना बदले दूसरी भाषा के पाठकों तक उस कृति को पहुंचाता है। और हमारे देश में तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि कोस कोस पर बदले पानी चार कोस वाले वाणी वाले देश में अनुवाद ही वो अदृश्य धागा है जो संस्कृत और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही इसकी विविध संस्कृतियों को आपस में पिरोता है, जोड़ता है। और अनुवाद वो माध्यम भी है जिसने कितनी भारतीय पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। 1785 में जब चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो इमर्सन और थोरो जैसे महान अमरीकी दार्शनिक इसके मुरीद हुए बिना नहीं रह सके। इसी तरह आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित पंचतंत्र दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं और 200 से अधिक लिपियों में अनुदित होने वाला बाइबल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक अनुदित ग्रंथ है। और प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान अंग्रेजी अनुवाद के बाद ही नुस्खों के संग्रह में शामिल किया गया था और उसके बाद ही उन्हें वैश्विक मंचों पर भारत का गोर्की या भारत का थॉमस हार्डी कहा जाने लगा। इसी तरह 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के अंग्रेजी अनुदित संस्करण पर ही नोबेल पुरस्कार मिला था जबकि गीतांजलि की मूल भाषा थी बांग्ला। अनुवाद के माध्यम से ही आज हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का समृद्ध साहित्य सात समंदर पार को ग्लोबल बुक सेल्फ की शोभा बढ़ा रहा है। यानी अनुवादक ऐसे मूक शिल्पकार हैं जो बिना किसी शोर के दो अलग अलग देशों के लोगों को करीब लाते हैं। तो आज उन सभी अनुवादकों का आभार जो कि भाषाई सरहदें तोड़कर हमें एक सूत्र में पिरोते हैं।

जी हाँ, अगर भाषा नहीं आती है तो कोई भी हमसे कह सकता है यू आर बुद्धू और यू आर हैंडसम, जान लो। खैर, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए और लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। और अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास हम सबने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। तारीखें, राजा महाराजाओं के नाम रटने में कितनी मुश्किल होती थी। तब कभी कभी हम सोचते थे कि काश कोई टाइम मशीन होती जो पलक झपकते ही किसी भी साल में हम चले जाते और देखते कि उस वक्त हमारे भारत में क्या चल रहा था या किस जगह किसका राज्य था। ये मुमकिन हो चुका है। इसे इतिहास को हकीकत बना दिया है टाइम मशीन की तरह। मुंबई के रहने वाले पूर्व इंजीनियर और मार्केटिंग प्रोफेशनल कृष्णा शेषाद्री जी ने, जिन्होंने भारत राज्य डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट बनाई है जो भारतीय इतिहास को अनोखे और डिजिटल तरीके से दर्शाती है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। ये वेबसाइट भारतीय उपमहाद्वीप के 800 वर्षों के राजनीतिक इतिहास को मैप करती है। इस पर जाकर आप किसी भी विशेष इस वर्ष का चयन करके ये देख सकते हैं कि उस समय भारत के किस भूभाग पर किस राजवंश का राजा राज करता था या उसका शासन था। चोल, पल्लव, कोटा राजवंश या असम का अहोम साम्राज्य को हम सभी ने पढ़ा ही है। उन्हें उनके राज्य को इस वेबसाइट पर जाकर विजुअल और कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से देखा जा सकता है। यानी इतिहास अब किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे आपकी स्क्रीन पर जिंदा हो उठेगा। साथ ही यहाँ आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए इसमें एक खास टैब दिया गया है ताकि इतिहास प्रेमी या विशेषज्ञों की राय से ऐतिहासिक तथ्यों में सुधार करके इसे सटीक बनाया जा सके। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी हिस्से का इतिहास थोड़ा अलग था, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सीधे सुझाव दे सकते हैं। ये वेबसाइट अपनी समृद्ध विरासत को जानने समझने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अपने स्मार्टफोन को खोलिए और भारत राज्य डॉट कॉम पर चले जाइए और भारत के गौरवशाली इतिहास की सैर करिए।

के पास जाने लगते हैं तो पुरानी पर्चियां, भारी भरकम फाइलें और एक्सरे रिपोर्ट्स का पुलिंदा संभालना सबसे बड़ा और मुश्किल काम हो जाता है। कभी रिपोर्ट घर पर छूट जाती है तो कभी डॉक्टर के केबिन में मिलती ही नहीं। लेकिन अब इस झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिलने वाली है। भारत सरकार लेकर आई है आभा कार्ड, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों का आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, यानी सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये स्वास्थ्य की एक तरह से तिजोरी है। जी हाँ, आपकी पुरानी बीमारी, डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सब कुछ इस एक डिजिटल कार्ड में महफूज रहेगा। जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाएं, बस ये नंबर दीजिए और डॉक्टर आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर देख सकेगा। ना फाइल खोलने का डर और ना ही पेपर संभालने की टेंशन। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। इसमें आपको डेटा पूरी तरह से, आपका जो है डेटा वो सुरक्षित रहता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फ़ोन पर कंप्यूटर में जाकर abdm.gov.in वेबसाइट खोलिए। वहाँ क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए और आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर दीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए और एक यूज़र नेम बनाइए। बस आपका चमचमाता हुआ डिजिटल हेल्थ कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फिर इसे वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। देर किस बात की, अपना और अपने परिवार का आभा कार्ड बनाइए और सेहत के मामले में हो जाइए एकदम टेंशन फ्री।

फिल्म लव स्टोरी से ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। और दोस्तों याद है बचपन का वो आंगन जहाँ सुबह की शुरुआत घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि नन्ही गौरैया की चहचहाट से होती थी। लेकिन आज हमारे आसमान से हमारे आंगन में वो छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया कहीं गुम हो गई है। कारण कई हैं, बढ़ती आबादी, आधुनिकता, खेतों में कीटनाशकों का जहर और कटते पेड़ जिसने इन बेजवानों का आशियाना छीन लिया है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण की तरह हमारे सामने आती हैं पंजाब के मोगा जिले के निधानवाला गांव से हरप्रीत कौर, जिन्होंने न केवल अपने घर को गौरैया और छोटे पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाया बल्कि पूरे गाँव में कई जगह पर पक्षियों के लिए लकड़ी और मिट्टी के रैन बसेरे भी बनवाए। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी प्रकृति और जीवों से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। इसकी शुरुआत हुई उस समय जब हरप्रीत एक गंभीर बीमारी के बाद बिस्तर पर थीं। तब दीवार पर तिनका जोड़ती एक चिड़िया ने उन्हें जिंदगी जीने का नजरिया दिया और तब छोटे से गत्ते के डिब्बे से चिड़ियों के आशियाने की उन्होंने शुरुआत की। और आज हरप्रीत के घर में 175 से ज़्यादा मिट्टी और लकड़ी के कृत्रिम घोंसले लगे हैं जहाँ रोज 250 से ज़्यादा गौरैया चहकती हैं, जिनके लिए वो रोज़ सुबह सबसे पहले उठकर साफ और ठंडा पानी रखती हैं और गर्मियों में कंगनी

बासमती चावल और सर्दियों में गेहूं या बाजरा खाने को लिए देती हैं। हरप्रीत कौर इन चिड़ियों को अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और प्यार से उन्हें राजकुमारियां कहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन परिंदों ने उनके जीवन में बेटी ना होने का खालीपन भर दिया है। हरप्रीत कौर का इन परिंदों से रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि ये चिड़ियां बिना किसी डर के उनकी हथेली पर आकर दाना चुगती हैं। इन नन्हे जीवों की सुरक्षा के लिए हरप्रीत कौर हर संभव प्रयास भी करती रहती हैं। गांव के लोगों को उन्होंने पराली के धुएं और कीटनाशकों की रोकथाम के लिए जागरूक किया है। तो हरप्रीत कौर की ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं, बल्कि एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है। और शुरुआत हमारे अपने घर की खिड़की या बालकनी में एक सकोरे में पानी और मुट्ठी भर दाने से भी हो सकती है।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी सरगम और आवाज़ें थी रफ़ी और लता मंगेशकर की। और कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बात आज उसी की जिसने छोटी सी उम्र में ये कर दिखाया है। जी हाँ, नोएडा की रहने वाली 17 साल की रहिणी बंसल एक नई क्रांति की नींव उन्होंने रख दी है, जिसका नाम है सूत्रधार। दर्जी की दुकान या फैक्ट्री में बचे हुए कपड़े को बेकार टुकड़े समझकर जिन्हें हम फेंक देते हैं और उन्हें कतरन कहते हैं, राहिनी ने उस कतरन से ग्रामीण महिलाओं का भविष्य उसमें उन्होंने देखा। और 2024 में सिर्फ 6 महिलाओं के साथ एक छोटा सा कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, ताकि कपड़े के कचरे को भी कम किया जा सके और गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिर शुरू होता है हुनर का जादू। उन बेकार कतरनों को रिसाइकिल करके ये महिलाएं ऐसे खूबसूरत और ब्रांडेड शर्ट, बैग और डिजाइनर कपड़े तैयार करती हैं, जिन्हें देखकर आप भी

बेहतर किया जा सकता है ताकि कपड़े के कचरे को भी कम किया जा सके और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिर शुरू होता है हुनर का जादू। उन बेकार कतरनों को रिसाइकिल करके ये महिलाएं ऐसे खूबसूरत और ब्रांडेड शर्ट, बैग और डिजाइनर कपड़े तैयार करती हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। सूत्रधार सिर्फ एक नाम नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। रायनी बंसल की ये पहल उन महिलाओं के बिल्कुल मुफ्त उसमें उनको सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग भी देती है और ये बहुत ही खूबसूरत कदम है। जानते हैं कि ये जो शुरुआत हुई थी उनकी वो 6 महिलाओं से हुई थी और 2050 से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं अब इसमें शामिल हो चुकी हैं और अपनी सुविधा के अनुसार काम करके हर महीने 4,000 से लेकर 25,000 तक कमा रही हैं, वो भी अपनी चौखट को पार किए बिना। तो अगली बार जब भी आप सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फैशन की बात करें तो रायनी बंसल और सूत्रधार की इन महिलाओं को ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो, हाथों में हुनर हो, तो बेकार कतरन भी ब्रांडेड पहचान बन जाती है।

कामचोर, इस फिल्म से अभी आपने सुना किशोर और लता मंगेशकर को। और अब बात 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। ये राष्ट्रव्यापी सफाई आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आम जनता को सफाई से जोड़ने और कचरा प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। यानी स्वच्छता केवल सरकारी काम नहीं बल्कि नागरिकों को, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने और इसे एक पारदर्शी जन आंदोलन बनाने के लिए स्वच्छता ही सेवा पोर्टल जारी किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के किसी भी कोने में, किस शहर या गांव में कितनी सफाई हुई है, इसका डेटा और तस्वीर लाइव देखी जा सकती है। वास्तव में ये पोर्टल देश के सफाई अभियानों को एक क्लिक पर जोड़ने और हर भारतीय को इसका हिस्सा बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस पोर्टल पर इसे जुड़े ऐप के माध्यम से कचरे वाले संवेदनशील स्थानों की रिपोर्ट की जा सकती है ताकि उन जगहों को पहचान कर उन्हें तुरंत साफ किया जा सके। एक बात और, इस पोर्टल पर योगदान देने वाले लोगों और संस्थाओं को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। सड़क, मैदान, पार्क, पहाड़, समुंदर सब हमारे हैं और हमारे लिए हैं, और इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना भी हमारा ही कर्तव्य है।

अभी आप फिल्म रॉकी में सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब बात कर ली जाए कुछ सेहत की, एक ऐसी सब्जी की जिसे आयुर्वेद में अचूक औषधि माना गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिमीकंद की, जिसे कई जगहों पर सूरन या ओल भी कहा जाता है। दिखने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जिमीकंद में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन B6, जो मस्तिष्क के विकास, मूड को ठीक करने और बालों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसी तरह से इसमें पाया जाता है फोलिक एसिड, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की खून की कमी को रोकने में जो सहायक होता है। आंखों की रोशनी और त्वचा और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन और जो है इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। जिमीकंद में बहुत से खनिज और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, इसलिए ये ब्लड प्रेशर, हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। और साथ ही इसमें पाया जाने वाला आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संचार को बेहतर बनाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस भी पाया जाता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको बनाने से पहले एक बात ध्यान रखनी होती है कि जिमीकंद काटते समय हाथों और गले में बहुत खुजली होती है, तो जब भी इसे काटें तो ग्लव्स पहनकर काटें, और इसके जब गले में ये प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसको बनाने से पहले इसमें हमेशा नींबू, इमली या आमचूर के रस के साथ ही इसे उबालें और पकाएं। और तो जब इतने सारे फायदे हैं इस फल के, तो क्यों ना इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए।

0: मिले।
1: अच्छा तो हम भी चलते हैं, और क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, और आप ये गीत जो सुन रहे हैं ये है ऑन आन मिलो सजना से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। तो मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता निपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने, पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रही हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक

पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774

अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वॉज वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम एक ही फिल्म से। मैं हूं आपकी मित्वा, आपकी साथी, योर्स वेरी ओन दीप्ति, और आज मैं लेकर आई हूं 1978 की वो फिल्म जिसका म्यूजिक ना सिर्फ उस दौर में बल्कि आज भी बड़े चाव से गुनगुनाया जाता है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस ही मैन की जिनकी स्क्रीन पर एंट्री भर से माहौल बदल जाता है। दमदार अंदाज इग्नोर ना कर सकें ऐसी पर्सनालिटी और वो खास मुस्कान। अपने दौर के जबरदस्त एक्शन हीरो, लेकिन साथ ही कॉमेडी हो या थ्रिल, सभी भूमिकाओं में एकदम परफेक्टली फिट हो जाने वाले हर दिल अजीज अभिनेता। जी हाँ, बात हो रही है धर्मेंद्र की, हमारे आपके अपने धर्मपाजी की। लेकिन आज की कहानी में धर्मपाजी के हाथ में ना तो कोई आम हीरो वाला मिशन है और ना ही कोई सीधा सादा सा मुकाबला। इस कहानी में है एक बेशकीमती खजाना और उसे पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं दुनिया भर से माहिर चोर। तो आखिर ये कहानी, या यूं कहें कि ये खेल है कैसा, और हमारे धर्मपाजी इसमें कर क्या रहे हैं? अजीब बताएंगे आपको। लेकिन अगर अभी तक आपने आज की फिल्म गेस नहीं की है

बहादुर सिंह जूनियर बनकर पहुंच जाते हैं। अब वहां कुछ हो ऐसा रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कई सारे चोर मौजूद हैं, और मकसद मकसद सबका एक ही है, और वो है एक बेहद कीमती हीरा चुराना। कीमती हीरा यानी शालीमार को चुराना। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक एक करके लोग, या यूं कहें जो कि बेसिकली चोर हैं, वो मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। कहानी में आगे जाकर पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे सर जॉन का अपना एक बहुत बड़ा मकसद है। खैर, अंत में सर जॉन के यहाँ नर्स के रूप में काम करने वाली शीला और कुमार शालीमार को चुराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक खुलने वाले राज में ये भी पता चलता है कि एक्चुअली सर जॉन ने दुनिया भर के कुशल चोरों को मारने के लिए और शालीमार के संभावित प्रतियोगी को खत्म करने के लिए ये सारा खेल रचा था। और फिर एक और धमाकेदार राज होता खुलता है, और उसमें पता चलता है कि कुमार यानी अपने धर्मपाजी असल में एक चोर नहीं बल्कि CBI ऑफिसर है, जो शालीमार को वापस लाने के लिए स्पेशल मिशन पर थे। खैर, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, और इस हैप्पी एंडिंग में कुमार और शीला सदा के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं।

0: बेहद खूबसूरत गीत और आवाज़ लता दीदी की। दोस्तों, जब बात हो रही है फिल्म शालीमार की, तो भला इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो।
0: अच्छा, इस गीत के भी ना दो वर्जन हमारे पास मौजूद हैं। एक में तो बस 2 मिनट का एक स्टैंजा वाला सॉन्ग है और एक है प्रॉपर पूरा गीत। अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय तो हो रहा है समाप्त, तो क्यों ना हम आपको सुनवाएं थोड़ा सा लंबा वाला गीत। और पूरा गीत एंजॉय करने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

श्रोताओं, ये थी आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से की फिल्म शालीमार, जो कि अपने समय की भारत की सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में गिनी जाती थी। किशोर कुमार साहब की आवाज में इस सदाबहार गीत के साथ ही मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल।

अरब 50 करोड़ डॉलर तो वत्ती रिकॉर्ड कुल विदेशी सीधे निवेश का जिक्र किया। उन्हें जापान क्रेडिट रेटिंग राही हाल ही विच भारत की लंबे समय की रेटिंग वधाए जाने का भी जिक्र किया। इस तो पहला खजाना मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार बारे राजमंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद नाल मुलाकात की। डॉ अल सईद ने 2025 विच अपनी भारत यात्रा याद किया ते कहा कि भारत विच कई बुनियादी ढांचे के खेतर जिवें कि बंदरगाहां हवाई अड्डियां शाहरा अते बिजली विच महत्वपूर्ण निवेश संभावना बने। इस तो इलावा कतर विच भारतीय कंपनियां लई भोजन सुरक्षा फार्मास्यूटिकल पेट्रोकैमिकल सिख्या सेहत अते स्टार्टअप वर्गे खेतरां विच निवेश दे मौके ने। खजाना मंत्री ने कहा कि भारत कतर नाल व्यापार अते निवेश वधाउण नूं बहुत महत्व दिंदा अते फरवरी 2025 विच कतर दे अमीर दी सरकारी यात्रा दौरान दोवां देशां विचकार संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली दे पद्धर तक उच्चा चुकण दा भी जिक्र कीता। भारतीय समुद्री फौज के कमांडर की कांफ्रेंस नवी दिल्ली में हो रही है। फौज मुखी और रक्षा स्टाफ मुखी समेत समुद्री फौज की सीनियर लीडरशिप इस विच मौजूद है। समुद्री फौज मुखी एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा सिलसिले और भारतीय समुद्री फौज की संचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी नाल बदलते मुताबिक कार्रवाई और प्रतिक्रिया समर्थावां नूं बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। रक्षा स्टाफ मुखी जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने समुद्री फौज नूं देश की रणनीतिक समर्थावां नूं वधाउण वाले एक महत्वपूर्ण शक्ति दस्या। उन्होंने तकनालोजी नूं तेजी नाल अपनाउण आत्मनिर्भरता प्राप्त करन अते भारत दी ऊर्जा सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई समुद्री फौज दे यत्नां दी शलाघा कीती।

फौज मुखी जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा माहौल अते उभर रही सुरक्षा चुनौतियां ते समुद्री फौज के कमांडरां नाल अपने विचार सांझे कीते। भाजपा ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस लोकां नूं खेतर भाषा ते जात दे आधार ते वंडण दी कोशिश कर रही है। तेलंगाना दे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दे हिंदू देवतियां ते कीते गए बयान बारे प्रतिक्रिया दिंदे हुए भाजपा बुलारे सुधांशु त्रिवेदी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस हिंदुआं नूं दक्खण ते उत्तर विच वंडण दी कोशिश कर रही है। अज नवी दिल्ली विच पार्टी सदर मुकाम विखे एक प्रेस कांफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं पार्टी बुलारे सुधांशु त्रिवेदी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस देवतियां नूं भी वंडण दी हद तक चली गई है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सरकार ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सिन में G20 के तिजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, 200 से ज्यादा गांव मुतासर हुए हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में सोने के 3 तमगे जबकि ट्रैप मिक्स टीम मुकाबले में सोने का 1 तमगा जीता है। भारत ने अब तक सोने के 10 तमगों समेत 59 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी CAFE जाब्ते नोटिफाई किए हैं। ये मौजूदा CAFE जाब्तों की जगह लेंगे और इनका इतलाक 1 अप्रैल 2027 से होगा और ये 31 मार्च 2032 तक नाफिज रहेंगे। भारत में फरोख्त के लिए तैयार या दरामद नई मुसाफिर मोटर गाड़ियों पर ये लागू होंगे। नए तरीक़ेकार के तहत ऑटोमोबाइल सनत के लिए ज्यादा इंजिबाती शफाफियत और एक मुस्तहकम पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम होगा। तवानाई की वजारत के मुताबिक नए CAFE तरीक़ेकार से सभी 5 वर्षों में साल ब साल की बुनियाद पर फ्यूल इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। ईंधन की खपत में तकरीबन 16% से ज्यादा की बेहतरी का हदफ रखा गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारी अफराद पर जोर दिया है कि वो भारत के साथ तिजारती और सरमायाकारी साझेदारी के इम्कानात सरगर्मी के साथ तलाश करें और दोतरफा बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएं। दोहा में कतर के कारोबारी अफराद की अंजुमन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत इकतसादी तरक्की, बढ़ती हुई सरमायाकारी और माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 94 अरब 50 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह से ज्यादा की आमद को उजागर किया। उन्होंने ये भी कहा कि दर्जाबंदी से मुताल्लिक जापान की एजेंसी ने हाल ही में भारत की तवील मुद्दती दर्जाबंदी को अपग्रेड किया है। इससे कबल मोहतरमा सीतारमन ने कतर के गैर मुल्की तिजारत के वजीर ममलिकत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद सईद से मुलाकात की। दोनों वजीरों ने

0: Men's compound team event in the ongoing Asian Games today. India completed a hat-trick of compound gold medals after the men's team registered a 238-237 comeback win over China in the final. Earlier in the day, the women's team of Chikita Taniparthi, Prithika Pradeep and Jyoti Sureka Vennam beat China 238-234 to successfully defend the gold medal, followed by mixed team gold by Chikita Taniparthi and Sahil, who also secured the LA 2028 Olympics quota place for India. Indian boxer Priya Ghangas has also clinched a bronze medal in the 60-kilogram category, showcasing the nation's growing prowess in boxing. In the trap mixed team event, Niru Danda and Kinan Chennai produced a remarkable turnaround under pressure to clinch the gold medal. India moved up to the 7th in the medals tally with 10 gold, 21 silver and 28 bronze. Overall medal tally reaches 59. In men's cricket, West Indies were 15 for no loss in 2.3 overs against host India on the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles, targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi-Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में हैं। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94.50 अरब करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
4: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है, गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
5: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
6: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग से इसके सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
5: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
7: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
5: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और

0: कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुँच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में

0: सहायता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, प्रोग्राम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज हमेशा की तरह एक सितारा मैं चुनकर लेकर आई हूं, जिनका आज जन्मदिन भी है। और वो एक ऐसे सितारे हैं जिन्हें हम सब बहुत प्यार करते हैं। जी हां, हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रिय निर्देशकों में से वो एक हैं। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के अपने करियर में 42 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया, और उन्हें हिंदी सिनेमा की दुनिया में किस नाम से जानते हैं ये आप हमें संदेश के जरिए बताएंगे। फिलहाल तो उन्हीं के निर्देशित की हुई एक खूबसूरत सी फिल्म का गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूं, लता जी की आवाज़ में। और मुझे पूरा अंदाज़ा है, जैसा कि हमेशा आप करते भी हैं, जैसे ही आप गीत सुनते हैं उसके सही जवाब आप मुझे भेज देते हैं। लेकिन हमारे जो नए दोस्त हैं, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ कैसे जुड़े इसके लिए मैं अपना जो रास्ता है, जो पता है, वो बता देती हूँ। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। ये वो रास्ता है, ये वो जरिया है जिसके जरिए आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं और इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बन सकते हैं। तो आज का सितारा कौन है और उन्हें हम प्यार से किस नाम से जानते हैं, इस गीत को सुनिए और अपनी बात संदेश के जरिए पहुँचा दीजिए।

कहते हैं कि बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़े बड़े सेट, चमकते सितारे और भव्य कहानियाँ जरूरी नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा घर, एक साधारण परिवार, चाय की प्याली, दो दोस्तों की बातचीत और माँ बेटी का रिश्ता, पति पत्नी के बीच की खामोशी और इन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी बड़ी बड़ी भावनाएं ही एक फिल्म को यादगार बना देती हैं। हिंदी सिनेमा में अगर किसी फिल्म ने आम

आज ही के दिन यानी कि 30 सितंबर 1922 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई की और शुरुआती दौर में अध्यापन से जुड़ गए। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में फ्रीलांसर कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। सिनेमा की दुनिया में उनका उनकी जो असली पहचान थी वो फिल्म एडिटर के रूप में बनी थी। 1945 में न्यू थिएटर्स स्टूडियो से जुड़े वो और आगे चलकर महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ उनका गहरा रचनात्मक रिश्ता बन गया। उन्होंने बिमल रॉय की फिल्मों में संपादन और निर्देशन संबंधी काम किया और 2 बीघा जमीन, देवदास और मधुमती जैसी फिल्मों से उनका नाम जुड़ा। यानी कि ऋषि दाने कैमरे के सामने नहीं बल्कि फिल्म की एडिटिंग टेबल पर बैठकर सिनेमा की भाषा को समझना शुरू किया और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उनकी फिल्मों में कहानी कहने की जो गति और दृश्यों की जो बारीकी थी वो इतनी सहज दिखाई दी।

ऋषि दाने 1955 में फिल्म दो बीघा जमीन में बिमल रॉय के साथ सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन राज कपूर साहब को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी, ये उनके साथ बनाई। ऋषिकेश की फिल्म निर्माण की जो प्रतिभा थी उसका लोहा समीक्षकों ने उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी से ही मान लिया था। ये फिल्म राज कपूर के

कहते हुए अभिनय और मुखर्जी के कसे हुए निर्देशन के कारण अपने दौर में काफी लोकप्रिय हुई। इसके बाद ऋषिकेश दा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम जैसी ऑफ बीट फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषि दा ने चार दशकों के अपने फिल्मी जीवन में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास किया। ऋषि दा की अंतिम फिल्म थी 1998 की झूठ बोले कुआ काटे। उन्होंने टेलीविजन के लिए तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते और उजाले जैसे धारावाहिक भी बनाए थे।

अभिनय ही नहीं गानों के फिल्मांकन के मामले में भी ऋषि दा का बेजोड़ जवाब था। अनाड़ी फिल्म का गीत सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, या फिर आनंद फिल्म का आप गीत ले लीजिए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, अभिमान का गीत नदिया किनारे, नमक हराम का गीत नदिया से दरिया जो आपने सुना था कुछ देर पहले, ये और या फिर आप अनुराधा फिल्म का गीत ले लें हाय वो दिन क्या आए, ये सब गीत आज भी हमें बहुत आकर्षित करते हैं। ऋषि दा ने एक बार कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चित्रित करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूँ। मैं अपनी फिल्मों में संदेश को मीठी चाशनी में पेश करता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि इसकी मिठास कहीं कड़वी ना हो जाए। उन्होंने एक से एक फिल्में बनाई, अनुराधा, आनंद, गोलमाल, बाबरची, नमक हराम, अभिमान जिसका गीत अभी आप सुन रहे हैं, बुड्ढा मिल गया, गुड्डी मिली, चुपके चुपके, अनाड़ी, बहुत लंबी

लिस्ट है, और 1961 में ऋषिदा को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 में ऋषिदा को फिल्म, जैसा कि हमने बताया, अनुराधा के लिए किया था, और 1972 में फिल्म आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ जो कहानी थी उसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें उनकी फिल्म को 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1956 की फिल्म नौकरी, 1959 की मधुमती और 1972 की फिल्म आनंद, इन तीनों के लिए उनको बेस्ट एडिटिंग अवार्ड दिया गया था। 1990 में फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, और साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज हम जो सितारा चुनकर लाए हैं उसका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी, यानी कि ऋषिदा।

आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को हम शामिल करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको लता जी की आवाज में सुनवा रहे हैं फिल्म मिली से ये गीत।

भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहोगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप गुरनूल जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, गेंदलाल श्रीवास, कृष्ण कुमार जी हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रही मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं। मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, दादा बाबू रोड गिरिहट झारखंड से हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार और फिजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताज मोहम्मद जी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन जी का एक और संदेश पहुंचा है। और तहसील बरून जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से दोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर जी हमारे साथ हैं। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना, डब्बू, चैतन्य, मेघा और परिवार के सभी सदस्य हैं। अगला संदेश हमारे पास फारूक अली खान जी का पहुंचा है और गुरमीत सिंह मीता जी साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से हैं। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये संदेश संबलपुर काकेर से फागुन राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव जी का आया है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता जी हमारे साथ हैं। बचिंगखेड़ा पंजाब से मिंची टोमस, पिंकी, लवली, आरती जी हमें सुन रहे हैं। और चैतन्य

शौकीन डब्बू सम्राट पंचकुला चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ कैंट से, इनके साथ कविता गौड़ जी हैं और हरजिंदर सिंह भाटिया जी, एंजल भाटिया सोनू जी के साथ हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से सुन रहे हैं। अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है वो अजीत भापसर जी का प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से भेजा है और हमेशा की तरह आपने ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है, शुक्रिया आपका। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। तुलसी मस्किन जी का एक और संदेश है। कस्बा बराड़ जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार रंजीत जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु आशी जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबू शिवाजी का हमारे पास संदेश आया है लेकिन इन्होंने कहाँ से संदेश भेजा है ये हमें लिख के नहीं भेजा और आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ और संदेश भी हैं जिन्हें हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। संदीप मकर ज्योति मकर जी जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्कान मोहम्मद जी चूड़ी लाइन मुगेरी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहनकर निर्मला विशाल जी हमें सुन रहे हैं और ये मारवाड़ा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी जी का संदेश आए। तो श्रोताओं, ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा हमें किसी असंभव दुनिया में नहीं ले जाता बल्कि हमें वापस हमारी ही दुनिया में लाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि 3 बजे मैटिनी मेलोडीज़ भी तो आपको सुनना है और हमेशा की तरह उसमें एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ उसका जवाब। तो तैयार रहिए कॉपी पेन लेकर, बस 3 बजने ही वाला है और मैटिनी मेलोडीज़ शो लेकर मैं एक बार फिर हाजिर होने वाली हूँ। इस प्रोग्राम से अभी आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। शुरुआत करते हैं जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म से, लता जी और रफी जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ, और उसके बाद

जी हाँ, हमारे हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जो प्यार हमें पहले था वही प्यार हमें आज भी है। इतने सालों बाद भी वही खुशबू, वही महक, वही ताजगी हम महसूस करते हैं हमारी फिल्मों के साथ में। तो आज आपसे जो सवाल है वो हमारे गोल्डन एरा का जो दशक था उससे जुड़ा हुआ है। आपको इस सवाल का जवाब देना है और इस सवाल के जवाब के साथ ही साथ हम ढेर सारी बातें भी करेंगे अपने इस खूबसूरत से जो समय था उसकी। आपको बताना है कि 60 के दशक की, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा, 60 के दशक की हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा गानों का एक खास रिकॉर्ड किस फिल्म ने बनाया था, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। खैर माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा सवाल जो है वो उसको मैं सरल सा कर देती हूँ। ये जो गोल्डन इरा है, ये जो हमारा 1930 से 1960 के बीच का जो इरा है, इसमें एक फिल्म आई थी और ये शुरुआती फिल्म थी। जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में सबसे ज़्यादा गाने थे और ये एक रिकॉर्ड है। वो फिल्म कौन सी है? अब आप थोड़े से अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा और याद कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा। हिंट मैं आपको दे रही हूँ, आपको 60 तक नहीं रहना है, 50 तक भी नहीं रहना है, थोड़ा सा और पीछे जाइएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और जब जवाब मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, मेल के ज़रिए अपने जवाब, अपने उत्तर हम तक पहुँचा देना है। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा गाने वाली फिल्म कौन सी थी, वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे ज़्यादा गाने थे।

आपकी जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने झटपट इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। चलिए कुछ खास बातें करते हैं और उसके बाद एक बार सवाल फिर दोहराएंगे हम। 1950 से 1960 के दशक की जो हिंदी फिल्में थीं उनको बनाना आज के मुकाबले काफ़ी मेहनत और धैर्य का काम था। उस समय ना डिजिटल कैमरे थे, ना कंप्यूटर ग्राफिक्स और ना ही मॉनिटर पर तुरंत शॉट देखने की सुविधा थी। कहानी सबसे पहले लिखी जाती थी, पटकथा संवाद तैयार होते थे, निर्देशक लेखक और निर्माता मिलकर तय करते थे कि कौन सा दृश्य कहाँ और कैसे फिल्माया जाएगा। फिर बारी आती थी कि किस तरीके से कलाकार चयन करना है, किस तरीके से उनको रिहर्सल करानी है, हीरो हीरोइन और बाकी जो कलाकार होते थे, आर्टिस्ट होते थे, उनको उनके संवाद याद करने पड़ते थे। शूटिंग से पहले कई बार रिहर्सल होती थी क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य दोबारा बनाना आसान नहीं था और ये काफ़ी महंगा भी होता था, सस्ता काम नहीं था। और उस समय शूटिंग फिल्म रील पर होती थी, कैमरे में सेलुलॉइड फिल्म की रील लगाई जाती थी। एक बार रील खत्म होने पर उसे बदलना पड़ता था। और क्या क्या होता था वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सवाल बता देते हैं। आपको बताना है कि हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में वो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे ज़्यादा गाने थे।

कभी तन्हाइयों में मुबारक बेगम की आवाज में आपने ये गीत सुना, हमारी याद आएगी फिल्म से। आपकी भी हमें याद आ गई है, ढेर सारे संदेश आपके पहुंच गए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना जी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं भेजा है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन, कौशल और हेमलता डिम्पल जी ने भेजा है, और आपने जो नाम लिखा है ये नाम सही नहीं है, थोड़ी सी कोशिश और कीजिएगा। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सही जवाब के साथ अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरनगांव गुजरात से अजीत भावसर जी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी सही जवाब हम तक पहुंचाया है, शुक्रिया। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूनी जी ने सही जवाब हमें पहुंचाया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट आप लोग हमारे दोस्त हैं। और मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल कामेश जी ने सही जवाब हम तक पहुँचाया है। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है फिर से एक बार अजीत भापसर जी का, तो हमारे जो दोस्त अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने नहीं सुन पाया कि हमने आपसे क्या सवाल किया था, उनके लिए हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। आपको बताना है कि हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे ज़्यादा गाने थे। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये मेरी तरफ से आपको हिंट है। और

बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से फिल्में बनाई जाती थी। बाकी बहुत मुश्किल काम होता था क्योंकि इतनी ज़्यादा ना टेक्निक थी ना इतनी, आज के ज़माने में तो हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है, हर शॉट होता है, डायलॉग्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, ये आपको कहीं ना कहीं मिक्स मैश करके आप बना ही लेते। लेकिन उस वक्त क्या होता था, हर चीज़ मैनुअल होता था, एक एक चीज़ पर बारीकी से काम किया जाता था। कैमरामैन लाइट को बड़ी सावधानी से लगाते थे, स्टूडियो में बड़े बड़े लाइट इस्तेमाल होते थे, कैमरे की जो स्थिति है उसका लेंस, कलाकारों की जगह, रोशनी, ये सब पहले से तय करनी पड़ती थी। और इसी तरीके से जो गाने होते थे, जो डांस होते थे, उनके लिए भी बहुत रिहर्सल होती थी, कलाकारों की चाल किस तरीके से वो चलेंगे, कैमरे की जो गति है, संगीत की टाइमिंग है, इसका तालमेल बनाया जाता था। और कई बार एक ही दृश्य के लिए कई टेक लेने पड़ते थे, तो इस तरीके से शूटिंग होती थी। और भी मज़ेदार बात बताऊंगी आपको, फिलहाल ये खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए मुकेश जी की आवाज़ में।

फिल्म बम्बई का बाबू से मुकेश जी की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। हमने आपको बता रहे थे कि किस तरीके से शूटिंग हुआ करती थी। वाकई उस जमाने में बहुत कम संसाधन थे, बहुत कम सुविधाएं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी खूबसूरती के साथ फिल्में बनी हैं कि वो आज भी अमर हैं, हमारे दिल में बसी हुई हैं। आज की तरह कैमरे की स्क्रीन पर तुरंत दोबारा देखकर शूट करने की सुविधा नहीं होती थी। शूट की गई फिल्म को प्रोसेस करने के बाद ही पता चलता था कि शॉट ठीक आया है या नहीं आया। इसीलिए कैमरामैन और निर्देशक के अनुभव की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। और ये बात आज के समय में सुनकर बहुत दिल एक तरीके से आश्चर्य लगता है। फिल्म की

को एडिटिंग टेबल पर देखा जाता था और ज़रूरत के अनुसार फिल्म के टुकड़े को काट कर फिर जोड़ दिया जाता था। यानी कि आज की जो CTR+C और CTR+V उस समय की कैंची और जोड़ने वाली तकनीक से होता था। कई फिल्मों में गीतों की रिकॉर्डिंग पहले से की जाती थी। कलाकार उस रिकॉर्ड किए गए हुए गीत को सुनकर उसके अनुसार ही अभिनय और लिप सिंक करते थे। संगीतकार, गायक, गीतकार और ऑर्केस्ट्रा की भूमिका इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी हम कुछ ही देर में शामिल करेंगे।

0: सुदर्शन मुख्य अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं। राजकोट से जैमिन जैन जी सही जवाब हमें दे रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शेनवास सरफराज परिवार के सभी सदस्य सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी ने भी हमें सही जवाब भेजा है। वीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर जी लिखते हैं कि आज की मैटिनी मेलोडीज में सबसे ज़्यादा अच्छा गीत हमारी याद आएगी लगा कभी तन्हाई में, और इस फिल्म में तनुजा थी और बहुत ही शानदार गीत संगीता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बस कुछ ही देर में हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे।
1: नींद चली गई रूठ के कैसे कटती रातें, अपनों से शर्माए गैरों से कतराए, सब्र की डोरी टूट गई तू लग मैर कर लाए।

आपसे हमने पूछा था कि सबसे ज्यादा गानों वाली फिल्म कौन सी थी, हिंट भी दी थी कि थोड़ा सा आप 60 और 50 से पीछे जाइए, और आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, सही जवाब एक बार में ही पहुंचा दिया। अब ये देखिए अंतर होता है, जो कि हम आपको बता रहे थे कि जब फिल्में बनती थी उस जमाने में तो किस तरीके से मुश्किलें आती थी, सीमित संसाधनों में फिल्में बनती थी, क्योंकि इस तरीके की जो हाई टेक्निक आज के ज़माने में वो नहीं थी। तो आज आपके पास इतनी हाई टेक्निक है कि जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा, जवाब आपने ढूंढ के तुरंत मुझ तक पहुंचा दिया। आपको बता देती हूं कि आप सभी के जवाब बिल्कुल सही थे, और ये फिल्म थी 1932 में रिलीज हुई ऐतिहासिक फिल्म जिसका नाम था इंद्रसभा। जानते हैं कितने गीत थे? 72। सोचिए आप कि स्टोरी कब होती होगी, क्योंकि 72 गाने तो मुझे लगता है पूरी फिल्म में मैंने देखी नहीं है इस फिल्म को, और अगर इस फिल्म का प्रिंट मिला तो मैं ज़रूर देखना पसंद करूंगी इस फिल्म को। 72 गानों वाली ये फिल्म थी।

1932 में रिलीज इंद्रसभा और इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वाह क्या बात है, और आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सफर में मेरे हम सफर बने। एक संदेश उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी का भी हमारे पास पहुंचा है और इन्होंने भी हमें बिल्कुल सही जवाब पहुंचाया है। मोहम्मद सईद अब्बासी जी भी बिल्कुल सही जवाब के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और वक्त हो गया है कि आपसे अनुमति लेनी है, लेकिन 5 तारीख को भूलिएगा मत, 5 अक्टूबर यानी कि सोमवार वाले दिन एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी ढेर सारे गीत संगीत के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिल में हमें बसाए रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: के जहनों में खौफ, दबाव और बेचैनी के एहसास जन्म लेने लगते हैं। खास तौर पर बोर्ड इम्तिहानात को हमारे मुआशरे में इस कदर अहमियत दी जाती है कि बाज़ औकात तलबा अपनी सलाहियतों के बजाय सिर्फ नंबरों की दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। समीन, ऐसे हालात में परीक्षा पे चर्चा एक मुस्बत और हौसला अफजा पहल के तौर पर सामने आया है। हुकूमत हिंद के इस सालाना मुकालमाती प्रोग्राम का आगाज 2018 में हुआ। इसके जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तलबा, वालदैन और असातिज़ा से बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं, जिसका मकसद तलबा, वालदैन और असातिज़ा के दरमियान इम्तिहानात के हवाले से एक सेहतमंद और तामीरी गुफ्तगू को फ़रोग देना है। इस प्रोग्राम का बुनियादी पैगाम ये है कि इम्तिहान को खौफ और दबाव का सबब नहीं, बल्कि सीखने, खुद एतमादी पैदा करने और अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर जांचने के एक मौके के तौर पर देखा जाए। कामयाबी सिर्फ अच्छे नंबरों तक महदूद नहीं होती, बल्कि मुस्बत सोच, ज़हनी सुकून, वक्त की बेहतर मनसूबाबंदी और मुतवाजिन तर्ज ज़िंदगी भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। हर तालिबे इल्म की दिलचस्पियाँ और सलाहियतें मुनफरिद होती हैं, इसलिए इम्तिहानात को खौफ की निगाह से नहीं, बल्कि एक नए तजर्बे और बेहतर मुस्तकबिल की जानिब एक मुस्बत कदम के तौर पर देखिए। हम इम्तिहानात को खौफ का सबब नहीं, बल्कि इल्म, खुद एतमादी और रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम समझें। आइए अब अक्स अदब के असल प्रोग्राम का रुख करते हैं। सामीन, आज का इंसान बज़ाहिर पहले से कहीं ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। मोबाइल की एक स्क्रीन पर दोस्तों, रिश्तेदारों और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में मौजूद बेशुमार लोगों से राबता मुमकिन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन बेशुमार राबतों के बावजूद इंसान वाकई एक दूसरे के करीब आया है, या फिर राबतों के इस हजूम में उसकी तन्हाई मजीद गहरी हो गई है। सोशल मीडिया ने फासले ज़रूर कम किए हैं, मगर बाज़ औकात दिलों के दरमियान फासले बढ़ा दिए हैं। हम एक दूसरे की जिंदगियों की तस्वीरें देखते हैं, कामयाबियां सुनते हैं, मुस्कुराहटें महसूस करते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छुपी परेशानियों, महरूमियों और खामोशियों से अक्सर बेखबर रहते हैं। सामीन, मसला सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि इसका गैर शोरी इस्तेमाल है। अगर ये वसीला इल्म, मुस्बत गुफ्तगू और हकीकी रवाबित के फ़रोग के लिए इस्तेमाल हो तो नेमत है, लेकिन अगर ये हकीकी ज़िंदगी, ख़ानदान और इंसानी क़ुर्बत का मुतबादिल बन जाए तो यही सहूलत तन्हाई का सबब भी बन सकती है। तो आइए इसी हवाले से एक तकरीर सुनते हैं। मौजू है, राबतों के हजूम में तन्हा होता इंसान, सोशल मीडिया का अलमिया। पेश कर रही हैं मोहतरमा सैयदा इल्मा काजमी।
1: आदाब सामीन, आज ज़रा एक अजीब सी तस्वीर का तसव्वुर कीजिए। एक शख्स है, उसके मोबाइल में सैकड़ों लोगों के राबते महफूज हैं। समाजी राबतों की दुनिया में हजारों लोग उससे जुड़े हुए हैं। हर वक्त पैगामात और इत्तलाएं आ रही हैं। उसकी तस्वीरों पर पसंद करने वालों की कसरत है। उसकी बातों पर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और उसकी दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ मौजूद है। लेकिन रात को जब मोबाइल की रोशनी बंद होती है तो कमरे की खामोशी में उसे एहसास होता है कि वो अकेला है। सवाल ये है कि जब हमारे पास राब्तों की इतनी कसरत है तो फिर तन्हाई इतनी गहरी क्यों होती जा रही है? क्या टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, या फिर हम एक दूसरे की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां हम एक दूसरे से जुड़े तो बहुत हैं, मगर दिल से जुड़े कम? आज की गुफ्तगू इसी सवाल के गिर्द घूमती है, राब्तों के हुजूम में तन्हा इंसान, सोशल मीडिया का अलमिया। सामीन, सबसे पहले एक बात वाजे कर देना ज़रूरी है, समाजी राबतों की ये दुनिया अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं। इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा की हैं। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से चंद लम्हों में राबते हो जाते हैं। तालिबे इल्म दुनिया भर के इल्म तक पहुंच सकते हैं। छोटे कारोबार अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फनकार, अदिब, सहाफ़ी और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद अपनी आवाज़ उन लोगों तक ले जा सकते हैं जहां पहले पहुंचना मुश्किल था। यानी टेक्नोलॉजी ने फासलों को कम करने का काम भी किया है, तो फिर मसला क्या है? मसला टेक्नोलॉजी का वजूद नहीं, मसला उसका बेएतदाल इस्तेमाल है। एक शख्स सिर्फ चंद मिनट के लिए मोबाइल उठाता है, फिर एक तस्वीर देखता है, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 2 घंटा, 3 घंटा या शायद इससे भी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। हम देख बहुत रहे होते हैं मगर किसी मीनिंगफुल गुफ्तगू में शामिल नहीं होते। हम लोगों की ज़िंदगी देख रहे होते हैं लेकिन असल में किसी के दिल का हाल नहीं पूछ रहे होते, और यहीं से तन्हाई का नया पहलू सामने आता है। हम दूसरों की ज़िंदगी देखते देखते अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। सामाजिक राब्तों की दुनिया का एक और गहरा असर है मुकाबला।

अपनी पूरी जिंदगी नहीं, जिंदगी के चुनिंदा लम्हे दिखाते हैं। इसलिए सामाजिक राब्तों की दुनिया को जिंदगी का पूरा आयना समझना ठीक नहीं। ये अक्सर सिर्फ एक चुनिंदा लम्हा होता है और उस एक लम्हे को पूरी कहानी समझना इंसान को अपनी जिंदगी से नाखुश कर सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है, हर चीज से पीछे रह जाने का खौफ। धीरे धीरे दिल में एक एहसास पैदा होता है, मैं पीछे रह गया हूँ। ये एहसास हमें बार बार मोबाइल देखने पर मजबूर करता है। लेकिन जिंदगी कोई दौड़ नहीं जिसमें हर वक्त दूसरों से आगे निकलना जरूरी हो। हर इंसान का वक्त अलग होता है, सफर अलग होता है और मंजिल भी अलग होती है। मुताले और तहकीक से भी ये बात सामने आती है कि सामाजिक राब्तों की दुनिया और तन्हाई का ताल्लुक सीधा और एक तरफा नहीं। कुछ तहकीकी मुतालों में ये देखा गया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर गुजारा हुआ वक्त तन्हाई से उतना गहरा ताल्लुक नहीं रखता जितना गैर जिम्मेदार या हद से ज्यादा इस्तेमाल रखता है। असल बात यह है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर कोई शख्स अपने दूर रहने वाले अपनों से बात करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करता है तो ये राब्तों को मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर वही शख्स अपनी तन्हाई से बचने के लिए घंटों बेमकसद चीजें देखता रहे और असल जिंदगी के रिश्तों से दूर होता जाए तो मसला पैदा हो सकता है। यानी कभी तन्हाई इंसान को इस दुनिया की तरफ ले जाती है और कभी इस दुनिया का गैर मुतवाजन इस्तेमाल तन्हाई को और गहरा कर सकता है। दोनों एक दूसरे को मुतासिर कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझना जरूरी है, अकेलापन और तन्हाई एक चीज नहीं। आप एक महफिल में 10 लोगों के दरमियान बैठे हों और फिर तन्हा महसूस कर सकते हैं, और कभी आप फिजिकली अकेले हों लेकिन दिल से मुतमईन और पुरसकून हों। इसलिए आज के दौर में असल सवाल ये नहीं कि हमारे राब्तों की तादाद कितनी है, असल सवाल ये है कि उन राब्तों में कितनी गहराई है। हमारे मोबाइल में 500 लोगों के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई है जिसे हम रात को 2 बजे फ़ोन करके कह सकें, मैं परेशान हूँ, मुझसे बात करो। यही फ़र्क है राब्ते और ताल्लुक में। राब्ता सिर्फ नाम और नंबर का हो सकता है, लेकिन ताल्लुक में एहसास, भरोसा और अपनाइयत होती है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया से नफरत करने के बजाय मीज़ान और तवाज़ुन सीखने की ज़रूरत है। मोबाइल को ज़िंदगी से निकाल देना ज़रूरी नहीं, बस मोबाइल को ज़िंदगी का मरकज़ बनने से रोकना ज़रूरी है। कभी खाने की मेज़ पर मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, कभी घर वालों के साथ बैठकर बिना किसी पर्दे की गुफ्तगू कीजिए, कभी दोस्त से मिलकर उसकी तस्वीर लेने के बजाय उसकी बात सुनिए, कभी किसी कहानी देखने के बजाय उसे फ़ोन करके पूछिए तुम वाकई कैसे हो, और सबसे अहम कभी खुद से पूछिए मैं वाकई कैसा हूँ। क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी की खबरें लेने में इतने मसरूफ हो गए हैं कि अपने दिल का हाल पूछना भूल गए हैं। इसीलिए इस दुनिया के हवाले से हर शख्स पर एक ही फैसला लागू नहीं किया जा सकता। मसला टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारे टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक का है। मगर एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान को सिर्फ देखे जाने की नहीं समझे जाने की ज़रूरत होती है, उसे सिर्फ पसंद की नहीं अपनाइयत की ज़रूरत होती है। इसीलिए असल रिश्तों को वक्त देना हमारी जिम्मेदारी है और सच्ची मौजूदगी की। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर देना चाहती हूँ। अगली बार जब आप किसी महफिल में बैठें और आपके आसपास लोग हों, मोबाइल की तरफ देखने के बजाय एक पल के लिए अपने सामने बैठे इंसान को देखिए। हो सकता है उसे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी हो सकता है वो मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा हो लेकिन अंदर से परेशान हो सकता है वो भी इसी इंतज़ार में हो कि कोई उसे सिर्फ इतना पूछ ले सब ठीक है। क्योंकि कभी कभी एक सच्चा सवाल किसी शख्स की तन्हाई का दरवाज़ा खोल देता है। हमारी दुनिया में राब्तों की कमी नहीं, कमी है तो सच्चे राब्तों की। पैगामात की कमी नहीं, कमी है तो वक्त देने वालों की। इसलिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए इल्म के लिए, राब्ते के लिए, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने के लिए और बेहतरी के लिए। लेकिन अपनी असल ज़िंदगी को इस दुनिया के हवाले मत कीजिए। और शायद इसीलिए राब्तों के इस हुजूम में हमें हज़ारों लोगों की नहीं कुछ सच्चे हकीकी रिश्ते ताल्लुकात की ज़रूरत है। आज जब हम अपना मोबाइल देखें तो एक पल के लिए अपनी राब्ता फहरिस्त खोलिए।

0: किसी ऐसे शख्स को फ़ोन कीजिए जिसे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई। किसी अपने से पूछिए तुम कैसे हो, और इस बार उसके जवाब का इंतज़ार भी कीजिए, क्योंकि मुमकिन है आपका एक फ़ोन किसी की सिर्फ एक और इत्तला ना हो बल्कि किसी की ज़रूरत बन जाए। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और इस डिजिटल दुनिया में जुड़े रहने के साथ साथ अपनी असल ज़िंदगी के रिश्तों से भी जुड़िए।
1: राब्तों के हुजूम में तन्हा होता इंसान, सोशल मीडिया का अलमिया। इस मौजू पर अभी आप मोहतरमा सैयदा इल्मा काजमी से उनकी तकरीर सुन रही थी, और आइए अब जगजीत सिंह की आवाज़ में एक खूबसूरत गजल समाप्त करते हैं।

अब नहीं होना नजरे यास मुझे, अब नहीं होना नजरे यास मुझे, साफ रखता हूँ दिल का आईना, साफ रखता हूँ दिल का आईना, दिल में रखते हैं दिल शनास मुझे, दिल में रखते हैं दिल शनास मुझे, ओढ़ ली आपने रिदाए गुरेज, ओढ़ ली आपने रिदाए गुरेज, इज़्तिराबी मिला लिबास मुझे, इज़्तिराबी मिला लिबास मुझे, क्यों ना उर्दू कहूँ तुझे ऐ शोख, क्यों ना उर्दू कहूँ तुझे ऐ शोख, खींचती है तेरी मिठास मुझे, खींचती है तेरी मिठास मुझे, कैसे बदलूँ लिबास उदासी का, कैसे बदलूँ लिबास उदासी का, खुश हैं वो देख कर उदास मुझे, खुश हैं वो देख कर उदास मुझे, और मखता है कि मेहनताना भी वो न दें रागिब, मेहनताना भी वो न दें रागिब, क्या हो बख्शिश की उनसे आस मुझे, क्या हो बख्शिश की उनसे आस मुझे, शरबते जब्त आए रास मुझे, पी न जाए कहीं ये प्यास मुझे। ये गज़ल और देखिए मतलब अर्ज किया है कि कैसे समझूं है कैसी आज की रुत, कैसे समझूं है कैसी आज की रुत, पल में बदले तेरे मिजाज की रुत, पल में बदले तेरे मिजाज की रुत, रुत है दिल में तेरे हिमायत की, रुत है दिल में तेरे हिमायत की, क्यों ज़बां पर है एहतजाज की रुत, क्यों ज़बां पर है एहतजाज की रुत, तेरी आमद की रुत से आती है, तेरी आमद की रुत से आती है, मेरे हर दर्द के इलाज की रुत, मेरे हर दर्द के इलाज की रुत, देख रुकता नहीं कोई मौसम, देख रुकता नहीं कोई मौसम, देख बदलेगी इख्तलाज की रुत, देख बदलेगी इख्तलाज की रुत, दिल को झुलसा रही है रस्म की लू, दिल को झुलसा रही है रस्म की लू, और बदलती नहीं रिवाज की रुत, और बदलती नहीं रिवाज की रुत, करना दे जर्द नखले अम्द को फिर, करना दे जर्द नखले अम्द को फिर, बुग्ज़ो नफ़रत जदा समाज की रुत, बुग्ज़ो नफ़रत जदा समाज की रुत, और मकता है गज़ल का कि क्या तड़पता रहेगा दिल रागिब, क्या तड़पता रहेगा दिल रागिब, कहर ढाती रहेगी लाज की रुत, कहर ढाती रहेगी लाज की रुत, कैसे समझूं है कैसी आज की रुत, पल में बदले तेरे मजाज की रुत। और एक गज़ल और समाज फरमाइए, मतला है कि बर्दाश्त किए सौ जुल्म सितम अब और नहीं, अब और नहीं, बर्दाश्त किए सौ जुल्म सितम अब और नहीं, अब और नहीं, ललकार के अब कहते हैं हम अब और नहीं, अब और नहीं, ललकार के अब कहते हैं हम अब और नहीं, अब और नहीं, लबरेज़ हैं सब्र के पैमाने अब चुप न रहेंगे दीवाने, लबरेज़ हैं सब्र के पैमाने अब चुप न रहेंगे दीवाने, खामोशी का रक़्स-ए पैहम अब और नहीं, अब और नहीं, खामोशी का रक़्स-ए पैहम अब और नहीं, अब और नहीं, डर का अंधेर मिटाएंगे खुशियों के दीप जलाएंगे, डर का अंधेर मिटाएंगे खुशियों के दीप जलाएंगे, दिल में वहशत आंखें नम नम अब और नहीं, अब और नहीं, दिल में वहशत आंखें नम नम अब और नहीं, अब और नहीं, गुंचा कोई भी न कुमलाए पेड़ों पर हरियाली छाए, गुंचा कोई भी न कुमलाए पेड़ों पर हरियाली छाए, गुलशन में नफरत का

0: मौसम अब और नहीं, अब और नहीं। गुलशन में नफ़रत का मौसम अब और नहीं, अब और नहीं। सारी तफरीक मिटाएंगे, वहदत के नगमे गाएंगे। सारी तफरीक मिटाएंगे, वहदत के नगमे गाएंगे। हर सू बिखरी आहों की कसम अब और नहीं, अब और नहीं। हर सू बिखरी आहों की कसम अब और नहीं, अब और नहीं। जितने भी फूल हैं महकेंगे, सारे ही परिंदे चहकेंगे। जितने भी फूल हैं महकेंगे, सारे ही परिंदे चहकेंगे। आपस में लड़ने वाले हम अब और नहीं, अब और नहीं। आपस में लड़ने वाले हम अब और नहीं, अब और नहीं। मकता है कि जालिम को जुल्म से रोकेंगे, हर फितनागरी पर टोकेंगे। रागिब अब तो है नाक में दम अब और नहीं, अब और नहीं। बर्दाश्त ये सौ जुल्म सितम अब और नहीं, अब और नहीं। ललकार के अब कहते हैं हम अब और नहीं, अब और नहीं। और समाप्त कीजिए, मतलब है कि तुम्हारी मेहरबानी कम नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी कम नहीं है। मेरी आँखों में पानी कम नहीं है, मेरी आँखों में पानी कम नहीं है। निशां जख्मे नेहा के कौन देखे, निशां जख्मे नेहा के कौन देखे। आया है जो निशानी कम नहीं है, आया है जो निशानी कम नहीं है। नहीं मुमकिन शुमारे जख्मे जज्बात, नहीं मुमकिन शुमारे जख्मे जज्बात। तेरी जिद की कहानी कम नहीं है, मोहब्बत की फरावानी है रागिब। सदाकत की गिरानी कम नहीं है, सदाकत की गिरानी कम नहीं है। तुम्हारी मेहरबानी कम नहीं है, मेरी आँखों में पानी कम नहीं है।
1: सामीन, अभी आप नवाए शायर के तहत जनाब इफ्तिखार रागिब से उनका कलाम सुन रहे थे। प्रोग्राम था अक्स अदब और तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने को है कुछ ही देर में समाचार।

आशा जी यानी आशा भोसले एक वर्सेटाइल कलाकार, कमाल की फनकार, एक अलग अंदाज, एक अलग अदा, एक अलग रंग।

0: खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना।
2: नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। मैं हूं अनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: अभिनव कुमार झा। नमस्कार साथियों,
2: इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेल जगत से जुड़ी सभी खबरें, और आज जो खबरें हम आपके लिए लाए हैं, आइए जानें उनकी एक झलक। शुरुआत करेंगे महाद्वीप के सबसे बड़े खेल मंच से, जहां एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी और निशानेबाजी में आए सोने के बाद हम जानेंगे कि क्या भारतीय दल पदक तालिका में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्थिति हासिल कर पाएगा या नहीं। उसके बाद बात करेंगे सरहद पार के उस मुकाबले की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, जहां भारत बनाम श्रीलंका के बीच कल होने वाले इस महामुकाबले पर हम नजर डालेंगे। फिर हम रुक करेंगे मैदान पर चल रहे उस लाइव रोमांच का, जहां हर गेंद पर सांसें थमी हुई है, यानी भारत बनाम वेस्ट इंडीज के मुकाबले की। उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर स्तर पर भविष्य की तैयारियों और लाल गेंद के उस कड़े इम्तिहान की, जहां इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए की जंग चल रही है। उसके बाद हम नजर डालेंगे अपने देश के उस युवा पौध पर जो जूनियर स्तर पर लगातार तिरंगे का मान बढ़ा रही है, और अंत में बात करेंगे रफ्तार और सटीक टाइमिंग के उस इंडोर खेल की जिसके बड़े मंच पर भारतीय पेडलर्स उतरने वाले हैं। जी हाँ, यानी चाइना स्मैश में आगे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सब खबरों के को लेकर चलते हैं हम कार्यक्रम में आगे और जानते हैं खेल सफर की शुरुआत महाद्वीप के सबसे बड़े खेल मंच यानी एशियन गेम 2026 से।
3: जी बिल्कुल अनु, सुबह आज तड़के भारत ने महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेख वेन्नम, चिकिता तनी पार्थी और पृथिका प्रदीप

0: इतकड़ी ने शानदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारत ने चीन को 234 के मुकाबले 238 अंकों से हराया और भारतीय टीम का 238 का स्कोर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने वाला रहा। ज्योति ने अपना चौथा एशियन गेम्स स्वर्ण जीता, जबकि चिकिता और पृथिका ने अपने पदार्पण में ही स्वर्ण पदक हासिल किया। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 233 के मुकाबले 234 से हराया था। इसके बाद कुशल दलाल और पृथिका प्रदीप की भारतीय मिश्रित टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतकर भारत का दूसरा गोल्ड पक्का किया। श्रोताओं, भारत और दक्षिण कोरिया का मुकाबला 157 और 157 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद शूट ऑफ में भारतीय जोड़ी ने 158 अंक अर्जित किए 157 के मुकाबले और जीत दर्ज की। इस जीत का विशेष महत्व इसलिए रहा क्योंकि इससे भारत ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के मिश्रित कंपाउंड टीम इवेंट के लिए कोटा स्थान भी हासिल किया। भारत ने इसके बाद पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण जीतकर तीरंदाजी में ऐतिहासिक 3 गोल्ड हैट्रिक पूरी की। कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु की भारतीय टीम ने फाइनल में चीन की टीम को 237 पॉइंट के मुकाबले 238 से मात दी। इस तरह भारत ने महिलाओं, मिश्रित और पुरुषों तीनों कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। तीरंदाजी के स्वर्णिम प्रदर्शन के बाद नीरू ढांडा और कैनान चेनाई ने मिश्रित ट्रैप टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण दिलाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 34 अंक हासिल किए, जबकि कतर 32 अंक के साथ दूसरे और चीन 33 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नीरू के लिए यह लगातार दूसरा स्वर्ण रहा। एक दिन पहले उन्होंने व्यक्तिगत टीम स्पर्धा में स्वर्ण भी जीता था और अब मिश्रित टीम के साथ भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं एशियन गेम्स में जाने से पहले कैनान चेनाई ने आकाशवाणी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
1: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप्स एंड इन द प्रिपरेशन टू द गेम्स, दैट एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो पॉजिटिव आएगा।
0: और इसी पॉजिटिवनेस का हमें परिणाम मिला कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं आगे बात करें तो महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत की प्रिया घंगस ने कांस्य पदक हासिल किया। सेमीफाइनल में उनका सामना चीन की यांग चेंग यू से हुआ, जहां प्रिया को 1-4 के विभाजित निर्णय से हार मिली। इससे उनका स्वर्ण पदक का अभियान समाप्त हुआ, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण भारत के खाते में कांस्य पदक आया। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की मिसगोना समादोवा को 5-0 से हराया था और उससे पहले दक्षिण कोरिया की 2 बार की विश्व पदक विजेता ओह ये ओनजी को भी हराया था। मुक्केबाजी की ही बात को आगे बढ़ाएं तो 75 किलोग्राम भार वर्ग में लोवलिना बोर्गोहेन ने कजाकिस्तान की नतालिया बोगडोनोवा को सेमीफाइनल में 3-2 से शिकस्त दी और फाइनल में जगह पक्की की, जहां अब उनका फाइनल मुकाबला 2 तारीख को चाइना की जी बाओ से होगा। लेकिन पुरुष 90 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कपिल पोखरिया को उज्बेकिस्तान के तुराबेक से 1-4 अंकों से हार झेलनी पड़ी, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने भी कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और अब हम सुन लेते हैं आज पूरे दिन में भारत ने ट्रैक साइकिलिंग में क्या कुछ किया, तो सुनते हैं ये रिपोर्ट। एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ 5वें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ 4थे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ 3रे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ 4था स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए। और अब श्रोताओं, बात करते हैं कल शाम के हुए मुकाबलों की, तो उसमें भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार आयोजित 4x100 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने 0.06 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में पुरुष और महिला धावकों ने मिलकर टीम बनाई थी।

और भारत ने सीजन बेस्ट प्रदर्शन करते हुए पोडियम हासिल किया था। इसके बाद भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिसमें विद्या रामराज, किरण पहल, पुवमा मचेतिरा और प्राचिकी भारतीय चौकड़ी ने 3:29.69 का समय दर्ज किया। भारत ने बहरीन को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि चीन ने कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स में

0: के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं बात करें तो भारत ने 2026 एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में अपने अभियान का अंत 24 पदक के साथ किया, जिसमें एक स्वर्ण, 9 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल थे। कल के एथलेटिक्स मुकाबलों के बाद भारत का एशियाई खेलों में एथलेटिक्स का गेम समाप्त हो गया। तो वहीं पे हांगझाऊ में 2023 खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य समेत 29 पदक जीते थे। हाँ
1: हाँ अभिनव, एशियन गेम्स में पदकों की बौछार तो जारी है, लेकिन कल क्रिकेट के मैदान पर एक बड़ा महामुकाबला होने वाला है। तो बात करते हैं भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल की। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। आइए बात करते हैं एशियन गेम्स में क्रिकेट की, जहां कल यानी 1 अक्टूबर को भारत और श्रीलंका के बीच पुरुष क्रिकेट का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। मुकाबला जापान के निशन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा और भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। दांव पर है फाइनल का टिकट और एशियन गेम्स में भारत के लिए एक और पदक पक्का करने का मौका। दिलचस्प बात यह है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें क्वार्टर फाइनल में बिना एक भी गेंद खेले अंतिम चार में पहुंची हैं। लगातार बारिश के कारण भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल रद्द हो गया था। भारत को ऊंची वरीयता के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली। इसके बाद श्रीलंका और नेपाल का क्वार्टर फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया और श्रीलंका ने भी ऊंची वरीयता के आधार पर अंतिम चार में प्रवेश किया। यानी दोनों टीमों के लिए ये इस प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में मैदान पर अपनी ताकत दिखाने का पहला मौका होगा। भारत इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। हांगझाऊ 2023 में खेले गए पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार श्रेयस अय्यर कप्तानी में टीम अपने खिताब का बचाव करना चाहेगी। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और युवा वैभव सूर्यवंशी जैसे विकल्प मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी में भी मैच का रुख बदल सकते हैं। मध्यम क्रम की बात की जाए तो कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वहीं शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी का विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। युवा वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो उनके लिए एशियन गेम्स के नॉकआउट मुकाबले में अपनी प्रतिभा दिखाने का ये बड़ा मंच रहेगा। ऑलराउंड विभाग में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर भारत को संतुलन देते हैं। दोनों बल्लेबाजी में उपयोगी योगदान देने के साथ स्पिन गेंदबाजी से मध्य ओवरों में श्रीलंका पर दबाव बना सकते हैं। स्पिन विभाग में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ विप्रज निगम भी भारतीय टीम का हिस्सा है। तेज गेंदबाजी भारत की बड़ी ताकत नजर आती है। टीम के पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर मौजूद हैं। बुमराह का अनुभव, नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में भारत के लिए बेहद अहम हो सकता है। जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह शुरुआती विकेट निकालने के साथ अंतिम ओवरों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पावर प्ले बेहद अहम रहने वाला है। अगर अभिषेक शर्मा और भारतीय शीर्ष क्रम शुरुआती 6 ओवरों में तेजी से रन जुटाते हैं तो श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरुआत से दबाव बनाया जा सकता है। गेंदबाजी में भारत चाहेगा कि बुमराह और अर्शदीप नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालें और इसके बाद अक्षर, सुंदर और बिश्नोई मध्य ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाएं। हालांकि इस मुकाबले में एक बार फिर मौसम पर भी नजर रहेगी। बारिश ने क्वार्टर फाइनल चरण को बुरी तरह प्रभावित किया और चारों मुकाबले बिना परिणाम के समाप्त हुए। इसलिए भारत और श्रीलंका दोनों चाहेंगे कि सेमीफाइनल में मौसम साथ दे और फाइनल का फैसला मैदान पर हो। भारत के सामने लक्ष्य साफ है, श्रीलंका को हराकर फाइनल में प्रवेश करना और लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीतने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखना। भारतीय टीम के महत्वपूर्ण नॉकआउट मुकाबले से पहले विकेट कीपर संजू सैमसन ने खराब मौसम की चुनौतियों से निपटने, नई परिस्थितियों में ढलने और टीम की तैयारियों पर की खास बातचीत। आइए सुनते हैं संजू सैमसन को।
2: अच्छा बारिश हो रहा था, आई थिंक इट वाज रियली गुड टू विटनेस सम गुड रेन हियर इन नगोया। सो वी हैड सम गुड टाइम, वी हैव बीन डूइंग सम टीम एक्टिविटीज। टीम का हर रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने का ट्राई कर रहे थे, मगर हम जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, कंडीशनिंग कर रहे थे। तो वी वेर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड वी आर टॉकिंग क्रिकेट एंड वी आर टॉकिंग कॉम्बिनेशंस एंड वी आर हैविंग कॉन्स्टेंट मीटिंग्स टू स्विच ऑन द प्लेयर्स व्हेन इज रिक्वायर्ड। सो दीज आर द टाइम्स वेयर वी नीड टू बी अ बिट मोर अवेयर कि वी नीड टू स्विच ऑन एंड सडनली प्ले अ बिग सेमी फाइनल। सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट एंड लकीली वी हैव गॉट अ गुड सनी डे टुडे टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस वॉट एवर वी हैव टू डू टुमारो। हाँ जी, हम क्रिकेट में भी मैक्सिमम ट्राई करेंगे, जितना हमसे होगा उतना मैक्सिमम ट्राई करेंगे इंडिया के लिए। पिच आज देखेंगे, जैसे आपने बोला आज सनी डे है, आज थोड़ा कवर हटाया होगा ग्राउंड में, तो विकेट आज देखने का मौका मिलेगा और विल डिसाइड। बहुत खुशी की बात है कि हमने बहुत अच्छा किया कल एथलेटिक्स में, कल बहुत अच्छी दिन था इंडिया के लिए एंड

0: Be happy, and I'm sure that we'll continue the good form.
1: कल के मैच का इंतजार तो पूरे देश को है अभिनव, लेकिन इस वक्त मैदान पर जो लाइव एक्शन चल रहा है, आइए सीधे रुख करते हैं भारत बनाम वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे की तरफ।
2: बिल्कुल सही कहा अनु, भारत बनाम वेस्ट इंडीज का दूसरा ओडीआई गुवाहाटी में खेला जा रहा है, जहां भारत ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को आमंत्रित किया कि आप बल्लेबाजी करें। और ऐसा लग रहा है अनु, वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी देखकर, कि शायद वो ये साबित करने पे उतर गए हैं कि भारत का निर्णय गलत था, क्योंकि वेस्ट इंडीज की तरफ से 3 शतक लगाए जा चुके हैं। पहला शतक जॉन कैम्पबेल ने लगाया, 101 रन की पारी खेली उन्होंने मात्र 68 गेंदों में। दूसरा शतक शाई होप के बल्ले से आया, जो कैप्टन और विकेट कीपर हैं, उन्होंने 94 गेंद में 104 रन की पारी खेली। और तीसरा शतक अमीर जंगू ने लगाया, जिन्होंने 77 बॉल में 114 रन की पारी खेली। अभी मात्र श्रोताओं 46 ओवर का खेल हुआ है, जिसमें वेस्ट इंडीज 6 विकेट के नुकसान पर 371 रन पर बना हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 46 ओवर में अगर 371 रन बने हैं, तो भारतीय कोई भी गेंदबाज ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने रन ना दिए हों। किंतु इसमें भी सबसे किफ़ायती गेंदबाज हम देखें तो रमन धीर रहे हैं, जिन्होंने 6 ओवर में मात्र 38 रन दिए हैं। विकेट हालांकि उनको सफलता हाथ नहीं लगी है, किंतु रविंद्र जडेजा को एक सफलता हाथ लगी है, 9 ओवर में 63 रन दिए हैं उन्होंने अभी तक। नूर बरार ने 9 ओवर में 89 रन दिए हैं और 2 विकेट अपने नाम किया। वहीं कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाए 10 ओवर में 65 रन देकर। तो देखना ये होगा कि 4 ओवर का खेल अभी और शेष है वेस्ट इंडीज का, उसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आएगी। तो देखना ये होगा कि भारतीय टीम 400 से पहले वेस्ट इंडीज को रोक पाती है अनु कि नहीं रोक पाती। बाकी 1-0 से तो भारत सीरीज में आगे है ही, देखते हैं क्या होता है।
1: जी हाँ अभिनव, सीनियर टीम के इस रोमांच के बाद अब वक्त है लाल गेंद के उस कड़े इम्तिहान का, जहां पुदुचेरी में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें आमने सामने हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। अब बात भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच

0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया इरुसे कमल का,
1: जी
0: तो कहते हैं कि जो हमारी पीली सरसों आती है उसमें मात्रा इसकी कम होती है।
1: पीली सरसों में कुछ अच्छी किस्में भी डेवलप हुई हैं। पीली सरसों में तेल की मात्रा तो अधिक है निश्चित रूप से, और
0: जी
1: क्वालिटी भी, लेकिन अभी तक उनका उत्पादन स्तर जो है हमारी कन्वेंशनल या जो राई या लाहा जिसको हम कहते हैं
0: जी जी
1: उसके बराबर नहीं हो पाई है। तो जैसे पीताम्बरी जैसी किस्में हैं जो येलो सरसों के लिए ही डेडिकेटेड है, और उसके अलावा ये येलो मस्टर्ड आजकल क्योंकि आपने इटालियन फूड्स में ये मस्टर्ड सॉस के रूप में बहुत काम आता है, तो उसके लिए ये बहुत प्रिफर्ड है। होटल इंडस्ट्री में बहुत अधिक इसकी मात्रा है, लेकिन किसानों के खेत पर ये कम इसलिए देखी जाती है, एक तो इसका उत्पादन कम है और दूसरा पकने के बाद इसमें शैटरिंग यानी कि इसकी जो पॉड्स हैं वो दाना बिखरने की एक समस्या किसान मित्रों की
0: जी
1: ओर से आई है। तो हालांकि इस पर शोध हो रहा है, लेकिन ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण किसानों के बीच में ये कम प्रचलित है।
0: डॉक्टर साहब, जब सरसों इतनी महत्वपूर्ण फसल है तो इसका बिजाई का समय क्या उपयुक्त?
1: देखिए जैसे कि नेहरू जी ने कहा था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर,
0: जी
1: और जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी फसल के उत्तम उत्पादन के लिए वो है बुआई का सही समय। अब सरसों ज्यादातर बारानी क्षेत्रों में होती है, तो बारानी क्षेत्रों का मतलब ये है कि अगर खरीफ में कोई फसल है और वो आपके कट के समय पर खेत आपका तैयार है, या जैसे अभी जो आप देख रहे हैं उसमें अगर ये हल्की बारिश भी अगर मिल जाती है तो वो पलेवा के रूप में काम करती है और बुआई के लिए सबसे उत्तम समय है। अगर आप देखेंगे तो 10 अक्टूबर के आसपास अगर करते हैं उसको अगेती कहते हैं, 10 से मान लीजिए 25 अक्टूबर तक जो इसकी बुआई है वो समय पर बुआई है, और कुछ किस्में जो पछेती बुआई के लिए भी प्रचलित हैं। तो अपने संसाधन के अनुसार, अगर सिंचित क्षेत्र है असिंचित क्षेत्र है उसके अनुसार किसान बुआई का सही समय और जो किस्म उनके पास उपलब्ध है उसके आधार पर बुआई का सही समय इस विंडो में चयन कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बिजाई के समय में काफ़ी अंतर बताया,
1: जी
0: तो क्या किस्में भी ऐसी हैं जो अर्ली
1: निश्चित
0: बिजाई की जाती
1: निश्चित
0: हैं
1: रूप
0: और
1: से निश्चित
0: जो?
1: रूप से आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से किस्मों का चुनाव करना है। अगर अपन अगेती किस्मों की बात करें तो पूसा संस्थान से ही निकली हुई किस्में हैं, जैसे पूसा मस्टर्ड 25, 27, 28, पूसा अग्रणी एक बहुत अच्छी किस्म है, उर्वशी है, पूसा तारक है, पूसा महक एक बहुत अच्छी किस्म है, इसके अलावा नरेंद्र अगेती राई 4 करके एक किस्म है। इनमें से अगर आप किसी किस्म का चुनाव करते हैं तो ये अगेती के लिए उत्तम है, और जो शुरुआती अधिक तापमान जैसे कई बार देखना पड़ता है, आप देखिए इस समय क्या होता है कि नाइट टेम्परेचर और डे टेम्परेचर तो कम है लेकिन दिन में मान लीजिए 12 से 2 बजे के बीच आसपास तापमान बढ़ जाता है, तो ये इसमें उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोधक हैं और इनके जर्मिनेशन सीड सेटिंग और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो लोग अगेती करना चाहते हैं वो इन किस्मों का चुनाव करें। उसके अलावा सिंचित क्षेत्रों में अच्छी किस्में हैं, रोहिणी है, लक्ष्मी है, NRCHB 506 एक अच्छी किस्म है, NRCDR2 एक अच्छी किस्म है, इनका आप चुनाव कर सकते हैं, गिरिराज है, और पूसा मस्टर्ड 30, 32 ये भी जो क्वालिटी किस्में हैं उनको आप ले सकते हैं। समय पर बुआई करें यानी कि आप मान लीजिए प्रथम सप्ताह अक्टूबर से लेके 20-25 तारीख तक, उसके बाद मान लीजिए अगर आप पछेती बुआई करना चाहते हैं तो कुछ किस्में हैं पुरानी किस्में हैं लेकिन अभी भी चलती हैं, जैसे कि आशीर्वाद है, वरदान, नव गोल्ड, स्वर्ण ज्योति, इनमें से जो किस्म आपको उपलब्ध हो, एक RGN 145 और पूसा तारक भी ऐसी किस्म है जो अगर आप लेट सोइंग करते हैं पछेती यानी कि 20-22 अक्टूबर के बाद भी, तो भी ये एक अच्छा उत्पादन किसान मित्रों को दे देती है।
0: डॉक्टर साहब, सरसों का बीज बहुत छोटा होता है,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: बीज की मात्रा कितनी लगती है?
1: ये हम किसान भाइयों को हमेशा बताते हैं और अक्सर किसान भाई बीज की जो दर है वो अधिक रखते हैं, और इसके कारण आप समझ लीजिए जो स्पेसिंग है वो रख नहीं पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। श्रेष्ठ ये है कि शुरुआत से ही आप बीज दर का ध्यान रखें। प्रति हेक्टेयर की बात करें हम तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों की बीज की अच्छी मात्रा है, आपका अच्छे किस्म का बीज है, अच्छे स्रोत से लिया हुआ है, तो और 98-99% जर्मिनेशन का जो, या 85+ में अगर भी हम

0: मान ले तो ये पर्याप्त है। एकड़ प्रति एकड़ की बात करें तो 1.5 किलो 1.25 किलो भी पर्याप्त है। अब किसान भाई अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मैडम सीड ड्रिल में ज्यादा बीज गिर जाता है। इसके लिए हम कहते हैं कि आप 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लीजिए। 1 से 1.5 किलोग्राम बाजरा का दाना है, इसको आप सेक लीजिए कढ़ाई में ताकि उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म हो जाए। उसको आप सीड के साथ मिक्स करके, यानी कि उस बाजरे के बीज को सरसों के साथ मिक्स करके बुआई करें। हम कई बार कहते हैं किसान मित्र खाद के साथ बीज को मिक्स कर देते हैं, वो एक बहुत ही गलत प्रथा है क्योंकि वो कोई ना कोई प्रकार का केमिकल है। बीज को भी नमी मिल रही है और वहीं पर आपका रसायन भी पिघल रहा है, तो आपकी जर्मिनेशन परसेंट हमने देखा है हमारे शोधों में 25 से 30% तक कम हो जाती है। और आप देखें अच्छी किस्मों का बीज जो है काफी महंगा भी मिलता है, तो अगर आप 1 किलोग्राम बीज भी अगर आप फालतू दे रहे हैं तो आप ये किसानों को एक एडिशनल कॉस्ट है जिसका कोई उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो बीज दर का ध्यान रखें, हर सरसों की किस्म में 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1.5 किलोग्राम प्रति एक।
1: डॉक्टर साहब, बीज ले लिया लेकिन उसके बाद उसको उपचार भी करना है।
0: बहुत जरूरी है। जैसे सीड ट्रीटमेंट को हमेशा मैं किसान मित्रों को बताती हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को टीका लगाते हैं
1: जी
0: ताकि भविष्य में कोई बीमारी ना हो, वैसे ही फसल है वो भी किसान उसको अपने बच्चों की तरह पालता है, तो उसको भी उसी प्रकार से बीज उपचारित करना बहुत जरूरी है। 3 उद्देश्यों से हम बीज उपचार करते हैं। पहली बात तो रोगों से उसको बचाव मिले, आपकी फसल को कीटों से बचाव मिले और एक उत्पादन अधिक हो। तो रोगों से अगर आपको बचाव करना है, स्पेशली जो आपकी फफूंद जनित बीमारियां हैं, सफेद
1: जी
0: रतुआ एक बहुत कॉमन डिजीज है मस्टर्ड में, उसके लिए बीज उपचार करिए। आप एपरॉन 35 SD के नाम से जो दवा आती है उसका 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, या फिर आप बाद में स्प्रे करने से बेटर है कि आप सीड ट्रीटमेंट इस समय करें। और अगर आप किसी रसायन पर नहीं जाना चाहते तो ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की एक फफूंद है,
1: जी
0: उसका 10-12 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज से उपचारित करें, उससे भी आपको फफूंद जनित बीमारियों से राहत मिलती है। तना गलन के लिए कार्बेंडाजिम से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड, उसकी करीब 6-7 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें तो आपको बीमारियों से और कीटों से मुक्ति मिलती है। और अगर आप उत्पादन अधिक करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी जैव उर्वरक से भी आप उपचारित करें।
1: डॉक्टर साहब, वैसे तो कहते हैं कि सरसों और चना के लिए ज़्यादातर खेत की तैयारी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन
0: देखिए
1: फिर भी खेत की तैयारी और बिजाई का तरीका।
0: खेत की तैयारी तो हर फसल के लिए महत्वपूर्ण है। अब कई बार परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि मान लीजिए बहुत ही छोटे और सीमांत किसानों में, बरानी क्षेत्रों में, वहां हर किसान के लिए मशीन को उपलब्ध करा पाना मुश्किल होता है। श्रेष्ठ ये रहता है कि आप एक गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई मान लीजिए हैरो से और एक पाटा लगा लें तो खेत आपका समतल हो जाता है। और उसके बाद आप पंक्ति से पंक्ति इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी, बहुत अच्छी किस्म ले रहे हैं हाई यील्डिंग तो आप 45 सेंटीमीटर भी दूरी ले सकते हैं, और इस तरह से आप बुआई करें। और बुआई के जब 2 या 3 पत्तियां आने लगे उस समय आपको विरलीकरण करना है, और तब आप इंश्योर करिए कि पौधे से पौधे कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी हो। उससे वातन बढ़िया होता है और सनलाइट अच्छा मिलता है, हर प्रकार से ये सरसों के लिए बहुत लाभदायक है।
1: डॉक्टर साहब, जिस समय आपने बताया है कि उसमें एक दो पत्तियां होती हैं, उस समय एक कीट का भी
0: जी
1: प्रकोप
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: तो उसे
0: बिल्कुल।
1: कैसे बचें?
0: कीटों की 2 श्रेणी है, एक तो सकिंग पेस्ट जो चूसते हैं और
1: जी
0: एक काटते हैं। तो इनके लिए जब आपकी फसल बहुत छोटी हो और ये ज्यादातर एक खेत से दूसरे खेत में ये कीड़ा ट्रेवल करता है तो आपको बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। तो क्लोरोपाइरीफॉस नाम का एक कीटनाशक है, उसकी डस्ट को आप थोड़ा पौधों के ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी पत्तियों पर आप डाल दें तो बेहतर रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रकोप है, हर साल आपके यहाँ ये समस्या आती है, और आपके नहीं तो पास वाले खेत में अगर ज्यादा समस्या है तो आपको रसायनों का चयन करना पड़ेगा, जिसमें डाईमेथोएट नाम का एक रसायन है या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल, इनकी करीब 1 लीटर मात्रा 500-600 लीटर पानी में घोलकर अगर आप प्रति हेक्टेयर की दर से नए निकले हुए पौधों में छिड़क देते हैं तो शुरुआती कीड़ा आपको खराब नहीं करेगा, वो फिर बाद में फिर एफिड या उसकी समस्या हो सकती है, लेकिन चितकबरा कीट या पेंटेड बग जो हम बोलते हैं उसकी समस्या सरसों में नहीं होगी।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई जो सरसों की बिजाई करते हैं वो
0: जी
1: छिटकमा करते हैं, और जबकि आप लोग सुझाव देते हैं कि उसे
0: बिल्कुल।
1: लाइनों में करें।
0: देखिए ये रासायनिक विधि तो नहीं है बुआई की, और इसमें देखिए एक तो बीज बहुत ज्यादा लगता है और आपका जर्मिनेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा तो आपकी सीड रेट बहुत ज्यादा होगी, पहली बात। अब इसमें कई बार किसान कहते हैं कि मशीनें नहीं है, तो हम कस्टम हायरिंग सेंटर के बेसिस पे या मान लीजिए FPOs आजकल बहुत प्रचलित हैं, वो मशीनें रखें और वो रेंट करें किसानों को, तो ये मशीन की समस्या नहीं होती। जो मुख्य बात ये है कि आपको कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है, मान लीजिए आपको निराई गुड़ाई करनी
1: जी
0: है, आपको स्प्रे करना है, तो आप छिटकमा विधि से बोए गए सरसों में आप कैसे खेत में चलेंगे, या तो आप पौधों को नुकसान करेंगे, तो ये समस्या है। तो और दूसरा वातन भी सही से नहीं होता, अब आप इतना प्रिसाइजली तो आप मैनेज कर नहीं पाते, तो कहीं गुच्छा गिर गया तो वहां बहुत सारे बीज एक साथ आ गए, कहीं कम पौधे आए हैं, और खेत में इस तरह का जब है तो हम और आगे ऑपरेशन इसके अंदर कर पाना संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि से करें इसको, सीड ड्रिल से।

0: करें।
1: डॉक्तर साहब, जो हमारी तिलहनी फसलें इतनी महत्वपूर्ण हैं और उनकी आवश्यकता भी देश में है, तो
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए सरकार क्या कर रही है कुछ?
0: बहुत रुझान है सरकार का। और हम क्योंकि खाद्यान्न के मामले में अगर बात करें तो अनाजी फसलों के संदर्भ में हम आत्मनिर्भर हैं। धान और गेहूं से हमारे भंडार भी भरे हैं, बफर स्टॉक्स भी भरे हैं, लेकिन तिलहन और दलहन में अभी भी कहीं ना कहीं हमको आत्मनिर्भरता नहीं है। और इसीलिए हमारे आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस मिशन आपको चल ही रहे हैं आप, तो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्णतः तिलहनी फसलों को ही समर्पित है वो है हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम। इसके अंतर्गत हम शोध के लिए, FPOs को, मशीन्स के लिए जो है अनुदान देते हैं किसान मित्रों को। इसके अलावा RKVY के अंदर भी ऑयल सीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके अलावा आत्मनिर्भरता का जो मिशन है उसके अंतर्गत हम सीड के मिनी किट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें उन्नत किस्मों का बीज उनको दिया जाएगा। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन ऑयल सीड भी एक बड़ा प्रोग्राम है, एम्बिशियस प्रोग्राम है सरकार का, जिसके अंतर्गत न केवल शोध इनके उत्पादन के लिए, इनका पोषक तत्व प्रबंधन कैसा हो, इनका प्रोक्योरमेंट हम कैसे करें, और किस तरह से जो इनके एक्सट्रैक्शन की या ऑयल मिल्स को एस्टेब्लिश किया जाए उनके ऊपर भी अनुदान और प्रमोशन है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे राइस फेलोज है, यानी कि धान के बाद कोई और फसल ली ही नहीं जाती, और क्योंकि मस्टर्ड को कम पानी चाहिए, सरसों को कम पानी चाहिए, और उस समय वहाँ बरसात कम होती है। वो जो हमारे करीब 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जो कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, उन सब में हम राइस फेलोज की जगह हम राइस मस्टर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि एडिशनल एरिया मिले और एडिशनल हमको ऑयल सीड प्रोडक्शन भी मिले।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पर किसान भाई आप द्वारा दी गई जानकारी से फायदा उठाएंगे और अपनी सरसों से उत्तम उत्पादन ले सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रीति बहन,
0: जी
2: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे जानकारी। जानकारी का विषय था संरक्षित मृदा नमी में सरसों एवं चने की सफल बुवाई। जानकारी दे रही थी डॉक्टर कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम राज सिंह की आवाज में ये रागिनी।
4: हाँ, धर्म

0: तो साथियों, अभी आपने प्रेम राज सिंह की आवाज़ में सुनी ये रागिनी, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के

0: बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। मैं हूँ लोकेंद्र
1: और मैं हूँ प्रीति।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में प्रीति बहन भाइयों के लिए जानकारी रहेगी और उनका मनोरंजन रहेगा, जिसमें वो जिसका वो बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि शाम का समय होता है और सभी अपने अपने रेडियो सेट लेके चौपाल पर बैठे आते हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी, और इस कार्यक्रम में हम क्योंकि उनको भजन, क्योंकि संध्या समय है तो भजन भी सुनवाते हैं और उपदेश भी सुनवाते हैं। तो एक कार्यक्रम की जो खासियत है वो ये है कि समय के अनुसार हम अपना संगीत भी बदल देते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है कृषि यंत्रीकरण उपमिशन योजना।
1: जी,
0: इसमें कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरणों का के उपयोग को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य है प्रतिदिन किसानों की उत्पादन लागत और मेहनत कम करने, कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाने और समय पर खेती के काम पूरे करने की मदद करना।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि कृषि यंत्र हैं तो उनका काम ही यही है कि हम किसानों के समय को बचा सकें और जिससे वो जो समय बचेगा उसमें वो अपनी कृषि को और उन्नत रास्ते पर लेकर जाएंगे, जिससे कि जाहिर सी बात है कि उसका उत्पादन ही बढ़ेगा। तो हमारे कृषक भाई जो हैं वो इन यंत्रों का इस्तेमाल करके अपनी खेती बाड़ी में समय की बचत करते हैं और समय की बचत करके जो उसका यूज करते हैं वो बहुत अच्छा हो जाता है फिर।
0: बिल्कुल प्रीति बहन, और इसके साथ साथ इस योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों को की खरीद पर निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी दी जाती है। छोटे ऐसे सीमांत किसानों, महिला किसानों और अन्य लक्षित वर्गों को प्राथमिकता देने के प्रावधान भी होते हैं प्रीति बहन। इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, कृषि यंत्र, फसल कटाई एवं अवशेष प्रबंधन से जुड़े उपकरण भी को भी आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम अपने भाइयों को बताएं इसका उद्देश्य क्या है ये भी बता देते हैं। खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ाना है, कृषि की मेहनत और समय की बचत करना है, कृषि कार्यों की अधिक कुशल बनाना है, छोटे किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकी पहुंचाना है, फसल अवशेष प्रबंधन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि हमारी जो सरकार है कृषि संबंधित जितने भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं या जो भी उपकरण हैं उनको उनका मकसद होता है कि कैसे वो छोटे किसानों तक भी पहुंचे, जिससे कि वो छोटे जो लघु किसान हैं वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जो कृषि जीवन है उसको बेहतर बना सके। और तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो सके, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, तो हम बातचीत और भी करेंगे प्रीति बहन। तो सबसे पहले भाइयों को कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं उपदेश। कलाकार हैं
1: राकेश त्यागी।

0: तो साथियों, अभी आपने राकेश त्यागी से सुना ये उपदेश, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं रबी दलहनी फसलों की उन्नत
1: उन्नतशील
0: किस्में और उनकी जो बुवाई है वो कैसे करें, इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर समर्थ लाल मीणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अमित तेवतिया।
2: साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसी जानकारी आपके साथ अवश्य साझा करते हैं जो हमारे कृषि जीवन को उन्नत करती है, उत्पादन बढ़ाती है और लागत मूल्य को कम करती है। आज हम बात करेंगे रबी की दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में और उनकी बुवाई के विषय में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर समर्थ लाल मीणा। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
3: धन्यवाद।
2: अब जैसा कि डॉक्टर साहब, विषय हुआ हमारा रबी की दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में और बुवाई। हमारे जो किसान भाई बहन हैं, रबी में कौन कौन सी दलहनी फसलें हमारे भाई बहन लगा सकते?
3: देखो, ये मौसम रबी का है, हमारी खरीफ की जो ज्यादातर फसलें कट गई है और रबी की तैयारी शुरू कर दी किसान भाइयों ने। तो आपने पूछा कि कौन कौन सी जो दलहनी फसलें हैं उनको बो सकते हैं किसान भाई। उनमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है चना, उसके बाद मसूर है, फिर आपका मटर है, फ्रेंच बीन भी लगाते हैं, राजमा लगाते हैं काफी किसान भाई। और अब किसान भाई इसलिए सोच रहे होंगे कि भाई हमें कैसे तैयारी करें खेत की, कैसे बीज लाना है, कहाँ से लाना है, ये सब क्वेश्चन उनके मन में आते हैं।
2: इसी विषय को हम से आज जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि चना है, मसूर है, राजमा है, तो जब ये फसलें लगाने का विचार आ रहा है तो उन्नतशील किस्मों की बात आती है, और किस्में भी वो कि जो जलवायु परिवर्तन के समय में और कोशिश रहती है कि कम से कम नुकसान हमारी इन फसलों को हो, तो कौन कौन सी ऐसी किस्में चुने और बीज कहाँ से लें, ये जरूर बताएं।
3: देखिए, फसल पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज, और बीज अगर आपने अच्छा लिया, उन्नत किस्म का लिया, तो की पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि जो किस्में होती हैं ये हम लोग पैदा करते हैं, ये रीजन के हिसाब से भी होती हैं, क्लाइमेट सुटेबिलिटी का अकॉर्डिंग होती हैं, रीजन वाइज होती हैं। तो मैं बात करूंगा उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में कौन कौन सी चने की फसलें आप ले सकते हैं, जिसमें पूसा मानव चना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी इसकी पैदावार होती है। फिर है पूसा 362 आरओई है, आरएसजी 888 भी है, और एचसी 5 है जो कि हरियाणा के लिए रिकमेंड की हुई है, और करनाल चना है एक, वो साल्ट टॉलरेंट उन्नत किस्में है, जहाँ पे जो साल्ट थोड़ा ज्यादा होता है खेती में उसमें किस्म को लगाया जा सकता है। फिर है डीसीपी 92-3, फिर है पूसा 11-3, फिर बीजीडी 72 है जो कि धारवाड़ से पैदा की हुई है, और एक है फूले G5 जो कि हम सेंट्रल पार्ट में बो सकते हैं। उसी प्रकार से जो काबुली चना है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नत किस्में हमारे पास हैं, जैसे पूसा चमत्कार हो गया, पूसा 1108 हो गया, जीएनजी 1292 हो गया जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में को ऑलरेडी हमने रिकमेंड की हुई है, काक 2 है जो कि सेंट्रल जोन के लिए हमने रिकमेंड की हुई है, बीजीडी 128 है जिसे हम पूसा सुब्रवी बोलते हैं जो कि सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार से आपका जो मशहूर है, मशहूर में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, उनको भी किसान भाई लगा सकते हैं, जैसे पूसा सेवालिक करके एक वैरायटी, उसको हम L4076 बोलते हैं, पंत L406, पूसा वैभव, प्रिया, सेरी, अंगूरी, पंत लेंटिल 14, इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जो कि किसान भाई ले सकते हैं। काफी किसान भाई तो लोकल एरिया में उनके जो ऑलरेडी रिकमेंड की हुई है, केवीके वगैरह है, उन्होंने रिकमेंड किया, तो उनका भी उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार मटर की बात करता हूं मैं, तो मटर हमारे देश में दो प्रकार के लिए बोया जाता है, जैसे फील्ड पी है उसको हम लोग दाने के लिए उगाते हैं, एक होता है वेजिटेबल पी जिसको हम लोग सब्जी के लिए उगाते हैं। जो किसान भाई दाने के लिए मटर उगाना चाहते हैं उनकी वैरायटी अलग होती है, तो उसमें महत्वपूर्ण वैरायटीज हमारे पास अलंकार है, अपर्णा है, रचना है, स्वाति है, सपना है, पंत मटर 5 है, मालवीय 15 है जो कि नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए है। इसी प्रकार के जो आपकी सब्जी वाली मटर है

0: में बॉनविल हो गया, पूसा प्रगति हो गया, आजाद मटर 2 हो गया है, नरेंद्र मटर 2 हो गया है। ये मटर की जो उन्नतशील वेराइटीज हैं किसान भाई लगा सकते हैं, ज्यादा पैदा इसमें आपको मिलेगा। अगर बात करते हैं राजमा की, राजमा का एरिया बहुत कम है, लेकिन किसान भाई चाहे तो वो भी राजमा की खेती कर सकते हैं। इसलिए उन्नत किस्में हैं जैसे अंबर है, उत्कृष्ट है, अरुणा है, इस तरह की जो उन्नत किस्में हैं किसान भाई इनका उपयोग कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही किस्मों की, और सबसे अच्छी बात कि आपने कौन सी किस्म के क्षेत्र के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी संस्तुति में लिए ये भी बताया। अब बात आती है कि जो हमारे किसान भाई बहन इन किस्मों को लेते हैं, तो कई बार होते हैं कि किसान भाई बहन अपने द्वारा ही जो पिछले साल का बीज होता है उसी का प्रयोग करते हैं,
0: जी
1: या कहीं ऐसी जगह से भी बीज ले सकते हैं कि मानो उपचारित नहीं है।
0: जी
1: तो कैसे पता लगे कि जो बीज है वो उपचारित है, और
0: जी
1: उपचारित नहीं है तो किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं?
0: बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। या तो आप जो बीज ले रहे हैं, नया बीज ले रहे हैं, या तो वो उपचारित होगा। उपचारित होने का यही होता है कि उसमें हम जब पैकेट पैकेट खोलते हैं तो उसमें ऑलरेडी फंगिसाइड लगी होगी, या तो और कोई भी इंसेक्टसाइड लगी होगी, या लगी नहीं होगी तो उसमें एक पाउच आएगा। तो पाउच में हो सकता है फंगिसाइड हो या फिर कोई कीटनाशक हो सकता है। तो अगर वो ऑलरेडी पैकेट में है तो इसका मतलब ये है कि वो बीज को उपचार करने के लिए सफिशियंट है। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई कोई किसान भाई खुद का बीज इस्तेमाल करना चाहे तो उसको उपचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
1: जी
0: बिल्कुल करना चाहिए। और हम लोग बीज उपचार इसलिए करते हैं कि उसमें कोई हानिकारक कीट ना लगे, कोई रोग ना लगे, और अच्छी पैदावार के लिए हम उसमें राइजोबियम का टीका लगाते हैं।
1: जी
0: क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी दलहन फसलें जो होती है ना, वो सभी लेग्यूम होती हैं, और लेग्यूम का करेक्टर होता है कि उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों में गांठें होती हैं, गांठे में राइजोबियम होता है। तो राइजोबियम के थ्रू हमारे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके रूट में राइजोबियम लिया। तो जो किसान भाई अगर खुद का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वो उसका उपचारित करें उसको। और उपचार करने का तरीका ये होता है, पहले तो फफूंदनाशक से वो सीड को मिलाएं, उसके बाद उसमें लगाए हानिकारक कीटों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो रेट होती है, जैसे मैं बोलूँ आपको, फफूंदी नाशक जो है वो 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम सीड में मिला करके मिक्स करके लगा सकते हैं। दूसरा कीटनाशी है, उसका 4 से 5 ml ले सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है, जैसे इमिडाक्लोपीड हो सकती है, या अगर कहीं टर्माइट का ज़्यादा प्रकोप होता है तो वहाँ आप क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं। उसके बाद टीका लगाते हैं हम लोग उसमें, और जो टीका उसमें क्या है कि बायो फर्टिलाइजर होते हैं राइजोबियम, तो उसका 1 पैकेट आप ले सकते हैं 1 हेक्टर के लिए। 200 ग्राम जो मात्रा है वो सफिशियंट होती है हमारे 1 हेक्टर के लिए। तो इस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बात आई कि चलो उपचारित हमने बीज किया,
0: जी
1: लेकिन एक विशेषता जैसे आपने कहा कि जो बीज हम नया लेंगे वो उपचारित भी हमें मिलेगा, तो अब किसान भाई के मन में ये भी प्रश्न बनता है कि बीज कहाँ से लें
0: जी
1: और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0: देखिए बीज के स्रोत तो काफी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि किसान भाई अच्छी उन्नत किस्म का बीज एक ऑथेंटिकेटेड जगह से लें। जैसे हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ भी आप ऐसे ले सकते हैं, और हमारे जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके KVK भी होते हैं, वहाँ से भी वो ले सकते हैं। और हमारा NSC का जो काउंटर होते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, वहाँ से भी किसान भाई ले सकते हैं। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन भी होते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, और कुछ प्राइवेट एजेंसी भी जो परमिटेड है ऑलरेडी, वहाँ से भी किसान भाई सीड ले सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी की। जैसे अब बात करूँ मैं चने की, चने में जैसे एक तो हम बोना चाहते हैं देसी चना, तो देसी चने की 80 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टर में चाहिए, और जो काबुली चना है उसकी करीब करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपकी क्वांटिटी चाहिए सीड की। ऐसे ही बात करूँ मैं लेंटिल की, तो लेंटिल में भी कई तरह की होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 से 35 किलोग्राम लेंटिल आपको 1 हेक्टर में सफिशियंट होगी। बात आती है मटर की। मटर भी अब 2 तरह के होते हैं, एक तो हम दाने के लिए उगाते हैं, एक हम उगाते हैं वेजिटेबल के लिए। तो जो वेजिटेबल पी होता है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे कोई किसान भाई दाने के लिए अगर मटर बो रहा है तो उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 90 से 100 किलोग्राम होती है। अगर हम बात करें वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं हम, 115 के 1 किलो के हिसाब से उसको हम लगाते हैं। तो इस तरह क्वांटिटी आप फिक्स कर सकते हैं, और इसको आप बिल्कुल ले आए, क्योंकि अभी मौसम हो रहा है, अभी बुआई का समय आने वाला भी है।
1: डॉक्टर साहब, जो बुवाई के समय की बात है,
0: जी
1: कई बार ऐसे कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं जिन्होंने अगेती धान की फसल लगाई होगी तो उनके खेत खाली होंगे,
0: जी
1: कुछ हैं कि जो भी खाली करने में लगे हैं, धीरे धीरे समेट रहे हैं, फसल प्रबंधन उनका चल रहा है,
0: जी
1: तो ऐसे में क्या उचित समय है तैयारी करना शुरू कर दें, तो
0: जी
1: किस प्रकार से हम कर सकते हैं इस समय बुआई खेत में?
0: बिल्कुल। देखिए रबी का जो मौसम शुरू होता है हमारा, वो हमारे होता है अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होता है। तो देखो ये जो समय है बुआई का, ये तय होता है कि हमारा जो एटमोस्फेयर का तापक्रम कितना है। तो जब तापक्रम डाउन होता है थोड़ा, जैसे करीब मैं बताऊँ आपको, जैसे 22 डिग्री या 25 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, तो उस समय हम इन फसलों की बुआई कर सकते हैं।
1: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो प्रथम पखवाड़ा है उसको छोड़ दें और
0: जी
1: उसके बाद में हम दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं।
0: क्योंकि
1: तो खेत की तैयारी कैसे करें?
0: जैसा आपने बोला कि कहीं धान उगा रखा है तो
1: जी
0: कहीं बाजरा है तो कहीं और अन्य प्रकार की फसलें उगाई खरीफ में, तो कुछ फसलें तो क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। जैसे
1: जी
0: किसी ने मूंग बोया होगा तो मूंग तो उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया होगा,
1: बिल्कुल
0: बाजरा भी हार्वेस्ट चल रहा है अभी। जैसे हमारा खेत खाली होता है, तो खाली होने के बाद क्या होता है ना कि हमारे खेत में काफी क्रॉप रेजिड्यू बच जाते हैं, तो उसके लिए हमें करना होता है कि पहली बात तो है कि उसमें मॉइस्चर कितना है।

0: अगर सफिशियंट मॉइस्चर है ज़मीन में तो आप बिल्कुल उसमें रोटावेटर चला सकते हैं, और मॉइस्चर कम है थोड़ा सा तो उसमें पहले कल्टीवेटर चलाएंगे, कल्टीवेटर के बाद हम रोटावेटर चलाएंगे। रोटावेटर हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो खरीफ की जो फसल है उसके जो क्रॉप रेजिड्यू हैं, अवशेष हैं, वो पड़े रहते हैं, तो उनको मिट्टी में अगर मिक्स कर देंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे और उनकी खाद बन जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के बाद बुवाई करते समय ही हमें कुछ ऐसी बातें निश्चित रूप से ध्यान में रखनी होंगी कि हमारा
0: बिल्कुल
1: उत्पादन अच्छा हो। कई बार देखा है कि हमने दलहनी फसल की बुवाई की और हमारे जो बीज का जो जमाव है वो बहुत दूर दूर खेत में हुआ,
0: जी,
1: या कई बार हमने इतना बीज लगाया कि वो बहुत ज्यादा घिन की सघन हो गई,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसमें बड़ी समस्याएं आएंगी, उत्पादन में भी, निराई गुड़ाई में भी, खरपतवार नियंत्रण में भी। तो
0: बिल्कुल
1: शुरू से विशेष ध्यान जो हमें देना है वो बुवाई के समय देना है, तो
0: बिल्कुल।
1: कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें?
0: ये देखो, अगर बुआई आप कर रहे हैं तो इसमें कई चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब हम बुआई कैसे करें, कई बार क्या है किसान भाई ब्रॉडकास्ट से कर देते हैं, और अब तो किसान भाई एडवांस हो गए हैं तो अभी वो लोग कतार में बुआई करते हैं, यानी कि सीड ड्रिल का इस्तेमाल भी करते हैं।
1: जी
0: तो मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो यह है कि सीड ड्रिल का इस्तेमाल करो, दूसरी बात यह होती है कि बुआई का जो डेप्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बीज ज्यादा गहरा चला गया तो नहीं उगेगा, और बीज अगर ऊपर रह गया तो भी नहीं
1: तो भी
0: उगेगा,
1: नहीं उगेगा।
0: तो इसलिए दोनों कंडीशन में बीज नहीं उगेगा। इसलिए इसकी ऑप्टिमम डेप्थ होती है, चने के लिए मैं बताऊं, चने की जो डेप्थ होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर। थोड़ा गहरा बोएंगे तो चना बहुत बढ़िया उगेगा आपका। और जैसे हम बात करूँ मैं लेंटिक, लेंटिक का सीड थोड़ा सा छोटा होता है,
1: जी
0: इसलिए इसका 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर पर आप बो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि नमी कैसी है, कितनी है। जनरली हम लोग चने की जब बात करते हैं तो चने में जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो होती है करीब करीब 30 से 35 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि किस प्रकार से हमें बुआई करनी है और बहुत सावधानी से ध्यान रखना है ताकि उत्पादन अच्छा हो, लेकिन वहीं जो पोषक प्रबंधन की बात आती है कि कई बार हम बुआई के समय ही हमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व तो खेत में डालने होते हैं और
0: जी
1: कुछ बाद में भी हम फिर डालते रहते हैं, तो पोषक प्रबंधन के विषय में आप क्या?
0: देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे 17 न्यूट्रिएंट होते हैं वो फसल के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसमें जैसे नाइट्रोजन छोड़ दें,
1: जी
0: बाकी सभी जितने भी आपका जो न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, उनको हम लोग बुआई के समय ही डाल देते हैं, चाहे वो आपका मेजर न्यूट्रिएंट हो चाहे
1: जी
0: वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। जैसे मेजर में जैसे बात करूँ मैं आपको, फास्फोरस है, पोटास हो गया, दूसरे सेकेंडरी वाले जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, फिर बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है जिंक है,
1: जी
0: आयरन है, जो भी है, मैग्नीज, बोरॉन। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो सॉइल है उसका आपने टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, ये सोइल टेस्ट से पता लगता है कि आपकी ज़मीन में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कौन सा कम है। उसी तरह से आप इनकी क्वांटिटी फिक्स करेंगे, अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कम है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं,
1: जी
0: ये सब बुआई के समय करना पड़ेगा। दूसरी बात ये होती है कि जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं तो ये अपनी नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो खुद ही कर लेती है,
1: जी
0: तो इसलिए हमको बाहर से कोई नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम किसान भाई से बोलते हैं कि आप 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दे सकते हो, लेकिन वो शुरुआत में दे सकते हैं, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, जब हमारी क्रॉप 25 दिन की होती है या 30 दिन की होती है, तब तक उसमें गांठें नहीं बनती हैं जड़ों में,
1: जी
0: तो तब तक उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति कोई भी खाद देने से कर सकते हैं, देसी खाद दे सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में यही उम्मीद होती है कि अच्छे से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई बहन लें। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: प्रीति बहन,
3: जी
2: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत। बातचीत का विषय था रबी दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में एवं बुवाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर समर्थ लाल मीना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सदस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया।
3: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ओमवीर आर्या की आवाज़ में ये उपदेश।

0: भाइयों, अभी आपने ओमवीर आर्या की आवाज़ में सुना ये उपदेश, और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गजलें। सबसे पहली गजल भूपेंद्र सिंह जी की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजलें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गजल की तरफ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ईवॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को और मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने फैसले को स्थगित किया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए MSP 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली ITMS को अपनी मंजूरी दे दी है। ITMS का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को वास्तविक यातायात स्थितियों के मुताबिक सक्षम बनाकर मौजूदा उपलब्ध सड़कों का बेहतर उपयोग करना है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नीति अनुसंधान और शासन केंद्र द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ईवॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना सिर्फ परिवहन में बदलाव नहीं है, बल्कि इससे ऊर्जा, विनिर्माण और शहरी नियोजन में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और PM E-Drive के सहयोग से भारत एक मजबूत और स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र को तैयार कर रहा है। श्री संधू ने कहा कि स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, भरोसेमंद चार्जिंग सुविधाओं और आसान लास्ट माइल कनेक्टिविटी से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर होगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे

0: संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सीएएफई मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा, यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान पेरू की संसद का दौरा किया। दौरे में श्री गुप्ता ने पेरू के सीनेटर विक्टर सेफरिनो फ्लोरेस रुइज के साथ चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीनेटर फ्लोरेस रुइज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और नेतृत्व पर आधारित पुस्तक द पावर विदिन भी भेंट की। इस संवाद ने भारत और पेरू के बीच आपसी समझ और सहभागिता को मजबूत करने में संसदीय और संस्थागत आदान प्रदान के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। इस दौरे का केंद्र संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन से संबंधित विषय रहे। ये संवाद दोनों विधायिकाओं के बीच व्यापक स्तर पर संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान का हिस्सा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भाजपा को जानो के अंतर्गत आज श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी जनता विमुक्ति पेरेमुना जेवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से बातचीत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ शासन और जनसेवा से जुड़े अपने विचार साझा किए। इस दौरान दिल्ली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कार्य पद्धतियों और 10 प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका में इसी तरह की पहल और शासन से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रीलंका संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था से भी जुड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित विकास भवन 2 में एआई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एआई और उभरती हुई नई तकनीक की प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी अधिकारियों को अपने रोजमर्रा के काम में एआई को अच्छी तरह समझने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। साथ ही गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के जरूरी मानकों को बनाए रखना भी उन्हें सुनिश्चित करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में सफाई मित्रों, स्वच्छाग्रहियों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर केंद्र का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण दिल्ली सरकार का संकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सफाई मित्र अपने परिश्रम और सेवा भाव से हर दिन दिल्ली को और स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। उनकी कर्म निष्ठा ही स्वच्छ दिल्ली की शक्ति है।
3: स्वच्छता जितनी आपकी जिम्मेवारी है उतनी ही दिल्ली के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है, हर एक अधिकारी की जिम्मेवारी है, कि हम सब की जिम्मेदारी है और मिल करके दिल्ली को सबसे साफ, सबसे सुंदर शहर बनाना यही हमारा ध्येय है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज मालवीय नगर में गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 20 फायर रिस्पांस मोटरबाइक और 26 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का ये संकल्प है कि राजधानी के हर नागरिक को आपात स्थिति में तेज, प्रभावी और पेशेवर अग्निशमन और बचाव सेवा उपलब्ध हो।
4: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा

0: की बदलते समय और दिल्ली की बढ़ती आबादी के साथ फायर सुरक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और तेज प्रतिक्रिया क्षमता से लैस करना आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली फायर सर्विस की क्षमताओं को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य दिल्लीवासियों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने बताया कि फायर सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास इसी व्यापक संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ तेज प्रतिक्रिया क्षमता, रणनीतिक तैनाती और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दिल्ली की आपातकालीन सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गीतांजलि फायर स्टेशन के संचालन के साथ दिल्ली फायर सर्विस के कार्यरत फायर स्टेशनों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। यहां 16 अग्निशमन कर्मियों के साथ एक छोटा फायर टेंडर, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल और आवश्यक अग्निशमन और बचाव उपकरण उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: भारतीय रेल द्वारा जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और जल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ जल की गुणवत्ता के अंतिम स्तर पर जांच तक सीमित न रहकर यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख महिला महाविद्यालयों के प्राचार्य, कुलपति, दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य महाविद्यालयों के कैंपस और उसके आसपास छात्रों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में भारतीय रक्षा संपदा सेवा IDES के 2025 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने प्रोबेशनरी अधिकारियों से कहा कि वे रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देते हुए ईमानदारी, दृढ़ता और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशभर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि देश भर के लाखों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और लगभग 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कर रहे थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंग्रेजी में आकस्मिक समाचार संपादक और वाचक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं newsonair.gov.in से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में एक बैठक में आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लक्षित रूप से कम करने के लिए संबंधित NCR राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जा रही तैयारियों, कार्यान्वयन और अनुपालन उपायों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज

0: किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई वॉल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। जी हाँ श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गीत मालिका में। श्रोताओं, कहते हैं ना, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो दिल में उतर कर याद बन जाते हैं। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत ऐसा ही याद बनाने वाला।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म तमाशा से। आवाजें थी अलका याग्निक और अरिजीत सिंह जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की तरफ। जी हाँ श्रोताओ, वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, मगर कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुनते ही पुराने दिन लौट आते हैं यादों की तरह है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म मैं हूं ना से, और आवाजें थी के और वसुंधरा दास की। जी हाँ श्रोताओ, यादों का भी अपना एक अंदाज होता है। कभी आंखों में नमी तो कभी होठों पर मुस्कान होती है। कुछ मुलाकातें छोटी होकर भी बहुत खास हो जाती हैं, और कुछ यादें उम्र भर हमारे साथ रहती हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म चलते चलते से और आवाज थी अभिजीत सिंह, अभिजीत जी की। जी हाँ श्रोताओं, एक धुन बजती है और कोई अपना याद आ जाता है, जैसे बीता हुआ कोई खूबसूरत सा पल। फिर से वही गाने, वही धुन, वही प्यारा सा गीत फिर से सुनने को मिल जाए तो वही यादें दोबारा से हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं, है ना।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म मरजावा से। आवाज थी अरिजीत सिंह जी की। श्रोताओ, कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं यादों से जुड़े होते हैं और कुछ गीत उन्हीं रिश्तों को आवाज दे देते हैं, उनकी आवाज बन जाते हैं। वही पुराने लम्हे फिर से ताज़ा हो जाते हैं हमारी यादों में।

श्रोताओं, ये गीत हमने सुना ज्योति नोरा और अरिजीत सिंह जी की आवाज में फिल्म संयोनी से। जी हाँ श्रोताओं, यादें भी कितनी अजीब होती हैं, दूर रहकर भी पास होती हैं। आंखें बंद करो तो सामने, और आंखें खोलो तो दिल में बस जाती हैं।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म सिम्बा से। आवाज थी अरिजीत सिंह और असीस कौर की। श्रोताओ, कुछ गीतों की खासियत होती है कि वो हमें हमारे ही पुराने पल तक ले चले जाते हैं। एक धुन बजती है और अचानक कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई मुलाकात याद आ जाती है, या फिर जिंदगी का कोई खूबसूरत मोड़। इसीलिए तो संगीत को यादों का सबसे खूबसूरत साथी कहा जाता है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म हीरोपंती से और आवाज थी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जी की। दोस्तों, हमने जो महसूस किया और जो कहां नहीं गया हमसे, जो शायद हम कभी कह भी नहीं पाते, यही सब किसी गीत की पंक्तियों में सुनाई दे जाए तो दिल की बातें अक्सर जुबां कह ही नहीं पाती, लेकिन एक गीत उन्हें कितनी आसानी से कह जाता है ना?

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म लव आजकल से और आवाज़ है मोहित चौहान जी की। और इसी गीत के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को यहीं पर इजाज़त दीजिए कार्यक्रम समेटने की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
2: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
2: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के

0: तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म

0: करने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
2: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
3: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
3: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपए पर बंद हुआ।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए

0: MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रुपये मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दोतरफा ताउन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मुनशियात भी जब्त की गई। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 29 तमगे शामिल हैं। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार के मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रुपये फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 415 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रुपये फी क्विंटल, जो कि कीमत में 136 रुपये फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रुपये फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की तमाम फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा मरकजी बजट 2018-19 में किए गए उस ऐलान के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत एमएसपी को पैदावार की मुल्क भर की औसत लागत से कम 1.5 गुना मुकर्र करने का फैसला किया गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के निफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1789 करोड़ रुपये से ज्यादा है, इसमें टैक्स भी शामिल है।
2: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: दिल्ली में फिलहाल तकरीबन 71 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। ITMS का मकसद सड़कों की मौजूदा गुंजाइश का बेहतर इस्तेमाल करना है। इस निजाम के जरिए ट्रैफिक इंतजामिया को ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक

0: इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी से गुफ्तगू में रिटायर्ड कॉमोडोर श्रीकांत के स्नूर ने बताया कि भारत ने दिफा के शोबे में बड़ी पेशरफ्त की है और वो दिफाई साजो सामान के बड़े दरामदकार से एक उभरते हुए बरामदकार मुल्क के तौर पर उभर रहा है। आत्मनिर्भर भारत 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की खातिर मईशत को मजबूत, ज्यादा से ज्यादा बासलाहियत और मुस्तहकम बनाने का एक तवील मुद्दती विजन है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते IGC और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान कश्ती से 526 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और हीरोइन जब्त की गई। ये कश्ती भारत के खसूसी इक्तसादी जोन के अंदर थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने उजागर किया कि मोदी हुकूमत मुल्क के नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला ने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और ताउन की मिसाल कायम करने वाली 16 रोजा तवील कार्रवाई के दौरान एक ईरानी कश्ती भी कब्जे में ली गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2029 के आखिर तक पंजाब को मुनशियात से पाक कर दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP जो वादा करती है उसे पूरा करती है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और शिमाल मशरकी रियासतों में इंतहा पसंदी का खात्मा किया है। अब हुकूमत की तवज्जो पंजाब को मुनशियात से पाक बनाने पर मरकूज होगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
2: पंजाब के शहीदों को, जिनमें शहीद भगत सिंह और उधम सिंह भी शामिल हैं, खिराज अकीदत पेश करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पंजाब कभी अपनी बहादुरी, ज़राअत और खुशहाली के लिए मशहूर था, लेकिन अब उसे मुनशियात के बढ़ते हुए मसले का सामना है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी की हलाकत जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। मूसा को बडगाम जिले के खान साहिब पुलिस स्टेशन के तहत वाक़ गुरवत कलां के इलाके में हलाक किया गया। वजारत ने कहा कि मूसा के हलाकत के साथ ही लश्कर ए तैयबा के वो चारों सीनियर कमांडर हलाक किए जा चुके हैं जो 2022 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म थे। आकाशवाणी के खबरों के शोबे NSD ने अंग्रेजी जबान में आरजी बुनियाद पर न्यूज एडिटर्स और न्यूज रीडर्स की खिदमात हासिल करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक अपनी दरखास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए www.newsonair.gov.in पर रुजू कर सकते हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के लिए आज का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा, क्योंकि आज भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम, मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने आज शाम जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जुमे के रोज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन चीन से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रुपये मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के 3rd मरहले की स्कीम को मंजूरी दी है। کابینہ نے دلی کے لیے ٹریفک بندوبست کے لیے انٹیلیجنٹ نظام کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نے مودی اور امریکہ

इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहिल मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

कहना सब।

0: أيها السادة، استمعنا إلى مجموعة من هذه الأغاني العربية الرائعة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया है कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस

0: कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी 2026 को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज हुआ है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा है कि नीलामी से व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलने, निवेश आकर्षित होने और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में आगामी रबी सीजन को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में किसानों को समय पर गेहूं के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए परिवहन भाड़ा दरों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रसंस्करण केंद्रों से प्रदेश के 80 से अधिक वितरण केंद्रों तक बीज पहुंचाए जाएंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue hain.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 1:10 और 8 सेकंड का, यानी कि समय हो चला है कार्यक्रम गीत सुनारे का। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम 70, 80, 90 के दशक के वो गीत जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग नई पहचान दी। तो कार्यक्रम में इन गीतों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे और शुरुआत कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

खान आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

साई बहादुर फिल्म का एक गीत आपने सुना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, और गीत बहुत पसंद किया गया था और कार्यक्रम का आगाज़ भी हमने एक खूबसूरत गीत के साथ किया था जो कि लिया था चुपके चुपके फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल थे चुपके चुपके चले रे पुरवैया। तो कार्यक्रम का आगाज़ खूबसूरत गीतों के साथ उस दौर में ले जा चुका है जिसे हम कहते हैं सुनहरा दौर, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल, और अगला गीत भी यकीनन आपकी कुछ तो यादें ताज़ा कर ही देगा।

0: जैसे पर्वत से मच्छर ये टकराएगा,
1: शेर से चूहा पंजा लड़ाएगा, क्या बच के दुश्मन हम

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल कार्यक्रम, जिसमें लेकर आते हैं हम 60, 70, 80, 90 के दशक के वो गीत जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग नई पहचान दी, और इसलिए उस दौर को कहा जाता है सुनहरा दौर।

देखिए ना, इन खूबसूरत गीतों के साथ कैसे हम आगे बढ़ते चले गए और 1:48 और 23 सेकंड का समय हो चला, यानी कि कार्यक्रम में समय बचा है बहुत कम। और इतने खूबसूरत गीतों के साथ मन तो कर रहा है कि अभी भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहे, लेकिन जितना भी समय मिले उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मनोरंजक बना पाएं। तो इस गीत के साथ आइए आनंद उठाइए एक और खूबसूरत गीत का उस सुनारे दौर से।

0: इसी के साथ आज का गीत सुना रहे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, कुछ ही पलों में 2 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये और चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। दिल्ली में

0: इस वर्ष सितंबर महीने का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में सबसे कम दर्ज कर लिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष सितंबर में दिल्ली का मासिक औसत AQI 102 रहा, जबकि 2025 में ये 105 था। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक की अवधि में दैनिक औसत AQI 200 से कम रहने वाले दिनों की संख्या पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कल इंडिया कुवैत मीडिया कनेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कुवैत में मीडिया के साथ भारत के संबंध और बातचीत को बढ़ाना है। इस पहल का विषय है साझेदारी, विचार और संभावनाएं। इसके जरिए कुवैत के मीडिया को भारत, भारतीय दूतावास की गतिविधियों और भारत कुवैत संबंधों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारत की तकनीक, डिजिटल क्षेत्र, आर्थिक विकास और नई उपलब्धियों के बारे में भी सूचित किया जाएगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 233 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली। दोनों ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए 255 रन की साझेदारी की। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet yesterday also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for rabi crops for the 2020

0: खूबसूरत गीत के साथ ही आज का गीत बहार फिल्म कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। और श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद कार्यक्रम होगा गजल गीत का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2027-28 मंडी सीजन के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में

0: बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में कॉलेजों और आसपास के इलाकों में छात्राओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कॉलेजों के आसपास स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी कॉलेजों में एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निर्माणाधीन 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विशेष गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की पहचान करना है, जिससे समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर, बाईपास और 4 और 6 लेन वाली सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue hain.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet yesterday also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of non-fossil fuel-based capacity by 2035. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं हरिहरन की आवाज के साथ।

बिछड़ा कुछ इस अदास की रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदास की रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।

गीतों और गजलों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: गुरुवाणा के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिनी एन का रागम कल्याणी में गायन। स्वाति तिरुरान की रचना है और मृदंगम पर हैं एम वी चंद्रशेखर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का निप्रस्त चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:20 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकते हैं सुबह 6:10 पर। 6:40 का वक्त है कार्यक्रम चिंतन का। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रसंग। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 65। संगीतिका कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं आप आज सुबह 7:10 पर। गीतों भरी गुड मॉर्निंग, इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा सुबह 7:30 पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45। उद्योग पत्रिका आप सुन सकते हैं 9:15 पर। 9:30 का वक्त है कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। दस बजकर 10 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमेंस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। जापान एशिया खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे, कर्नाटका के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है।

0: India comfortably chased down the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. And India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 medals yesterday. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब वक्त है कार्यक्रम आओ योग करेगा। आज के आओ योग करे कार्यक्रम में आप सुनेंगे कंधे के मूवमेंट और ताड़ासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं।